मीडियम वेव 212.3 एक मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर, वह एफएम 102 तथा 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय प्रातः के 5:59 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक

0: स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
2: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। FM 102 व 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये प्रसारण श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोता प्रातः के 6:05 हो रहे हैं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति वह धारा है जहाँ शब्द नहीं अपितु भाव बोलते हैं। भक्ति से हृदय मंदिर, श्वास मंत्र व जीवन प्रार्थना स्वरूप बन जाता है। आइए सच्चे हृदय से ईश्वर का ध्यान हम भी करते हैं। आरंभ करते हैं अर्चना।

प्रार्थना शब्दों का मेल नहीं, अंतर मन की जैसे कोई पुकार। जहाँ समर्पण और विश्वास है, वही मन प्रभु मिलन का द्वार।

और श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप यहीं समाप्त करते हैं। कार्यक्रम में आज जो भक्ति रचनाएं हमने आपको सुनवाई, उनमें स्वर थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, सीमा मिश्रा, कविता कृष्णमूर्ति और सुमन कल्याणपुर के।

अर्चना भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का आनंद श्रोता ले रहे थे आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान। आज की कड़ी में मुख्य स्वर है कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: श्री रामचरितमानस का प्रसारण श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 व 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत श्री अशोक गुप्ता द्वारा लघु वार्ता। विषय है मृदा अपरदन।
1: पर्यावरण के निर्माण में मृदा एक प्रमुख संगठक पदार्थ है। जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं मानव सहित सभी जीव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से संबंधित होते हैं, क्योंकि पैतृक चट्टानों के विघटन से प्राप्त खनिज तत्व ही प्रकृति में उपलब्ध सूर्य की ऊर्जा, जल, वायु एवं विभिन्न सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से ह्यूमस नामक पदार्थ का निर्माण कर पौधों एवं जीवों में जीवन का संचार करते हैं। मृदा की संरचना, निर्माण, बनावट एवं गुण स्थान विशेष में भिन्नता लिए हुए होते हैं। यही कारण है कि सजीव भी भिन्न भिन्न पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जगह एक जैसे ही जीव जंतु एवं एक जैसे ही पेड़ पौधे पाए जाते। यही प्रकृति का रहस्य भी है कि भिन्न भिन्न मृदा वाले क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। प्राकृतिक असंतुलन एवं पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण मृदा अपरदन भी है। विभिन्न प्राकृतिक एवं जैविक कारणों से मृदा का अपने स्थान से हटकर या बहकर अन्यत्र चले जाना और अपने पीछे बंजर भूमि छोड़ जाना मृदा अपरदन या सोइल इरोजन कहलाता है। सामान्य भाषा में इसे हम मिट्टी का कटाव के नाम से भी जानते हैं। मृदा अपरदन के कारण उपजाऊ मिट्टी के सूक्ष्म कण मय पोषक तत्वों के अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस स्थान की मृदा अनुपजाऊ होकर धीरे धीरे बंजर हो जाती है। इस कारण वहाँ वनस्पति आवरण भी कम होने लगता है, साथ ही उस पर आश्रित संपूर्ण खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल भी प्रभावित होता है। इस प्रकार मृदा अपरदन से संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। इसीलिए मृदा की सुरक्षा एवं संरक्षण आवश्यक है। मृदा अपरदन को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे जलीय

अपरदन, वायु अपरदन एवं समुद्रीय अपरदन। जलीय अपरदन में बहती हुई नदी का जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को एवं किनारे की मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिससे मृदा के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। बाढ़ का पानी जलीय अपरदन में अधिक भूमिका निभाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल द्वारा अपरदन से अवनालिकाएं बन जाती है, जो शने शने गहरी होती जाती है। नदियों में तेज जल के प्रवाह से नदी तट का किनारा कटता जाता है और नदी चौड़ी होती जाती है।

0: जो शने शने गहरी होती जाती है। नदियों में तेज जल के प्रवाह से नदी तट का किनारा कटता जाता है और नदी चौड़ी होती जाती है। वायु द्वारा मृदा अपरदन खुले मैदानों, वनस्पति रहित क्षेत्रों एवं मरुस्थल में अधिक होता है। वायु के तीव्र वेग से मृदा के कण अपने स्थान से तेजी से बहकर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं। समुद्री अपरदन में समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटा के कारण तटवर्ती क्षेत्रों की मृदा का अपरदन होता है। साथ ही तटीय क्षेत्रों की मृदा अधिक लवणीय हो जाने से कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। प्रकृति जन्य कारणों के अलावा मानवीय हस्तक्षेप से भी मृदा का अपरदन होता है। वनों की निरंतर कटाई से वनस्पति का विनाश हो जाता है तथा धीरे धीरे जमीन की ऊपरी परत बिल्कुल अनावृत हो जाती है, जिससे तीव्र मृदा अपरदन होता है। कुछ क्षेत्रों में अनियंत्रित पशु चराई होती है, जिससे पशु वनस्पति को जड़ सहित चर जाते हैं। चूंकि जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, इसलिए वनस्पति की जड़ें भी पशु चराई से नष्ट होने से मृदा ढीली हो जाती है और मृदा अपरदन तीव्र हो जाता है। इसी प्रकार कई वर्षों तक एक ही खेत पर लगातार कृषि करने से भी मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होकर मृदा अपरदन प्रारंभ हो जाता है। अनियंत्रित एवं अत्यधिक सिंचाई के कारण भी मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है, जिससे मृदा के भौतिक गुणों में ह्रास होकर मृदा अपरदन की क्रिया बढ़ जाती है। पहाड़ी एवं ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसके अतिरिक्त ढाल कम करने के लिए बीच बीच में दीवारें भी बनाई जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं तथा नदियों एवं नहरों के किनारों पर पक्की दीवार बनाई जाती है। फसल चक्र अपनाकर अनियंत्रित पशु चराई व झूम कृषि रोककर जंगलों को बचाकर मिट्टी को बांधने वाले पौधे लगाकर तथा वायु के वेग को कम करने वाले पौधे जैसे विंड ब्रेक्स लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इन सब सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मृदा को अपरदन से बचाया जा सकता है। इस बहुमूल्य मृदा को संरक्षित रखने का प्रयास करें।
1: मृदा अपरदन इस विषय पर श्री अशोक गुप्ता द्वारा लघुवार्ता आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत। FM 102 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

और श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आइए अब आपको देते हैं जानकारी हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में प्रातः 7 बजे का समय होता है नमस्कार कोटा कार्यक्रम के लिए, और कार्यक्रम में आज की शुरुआत होगी प्रेरक विचार के साथ। साथ ही सुनिएगा चर्चा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 से जुड़ी। व्यक्तित्व की बातों में आज करेंगे बात छत्रपति शाहू जी महाराज से जुड़ी, और शहर की गतिविधियों के साथ कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ होगा खास। 7:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन आप सुन सकेंगे।

श्रोताओ 7:30 पर लेकर हाजिर होंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत सुहाना सफर। प्रातः 8:00 आप सुनेगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर लोक संगीत की मन भावन प्रस्तुतियां और 8:30 सुगम संगीत का आनंद चंबल चैनल से ले सकेंगे आप। महिला जगत, महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर चंबल चैनल से प्रसारित किया जाएगा और आज के इस अंक में घर के वातावरण का बच्चों के व्यक्तित्व और भविष्य पर पड़ने वाली दूरगामी प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। जी हां श्रोताओं, इसके साथ ही राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 से जुड़ी चर्चा भी सुनिएगा और सुनिएगा श्रीमती अंजलि कुमारी से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय होगा वित्तीय साक्षरता और निवेश। जानकारी की बातों में सुनिएगा रसोई साफ के साथ सुरक्षित।

हो तो सुनना ना भूलिए प्रातः 9:30 बजे महिला जगत कार्यक्रम। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 12 बजे से। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युव वाणी लेकर हाजिर होंगे 5:00 बजे। इसमें सुनिएगा आज का संवाद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 से जुड़ी बातें और व्यक्तित्व में जानिएगा छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। श्रोताओं युववाणी कार्यक्रम में ही विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट रशमोर की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। युवा लोक गायक मोहित मेहता से विशेष बातचीत भी आपको सुनवाई जाएगी। नॉलेज कॉर्नर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ी बातें और यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ी बात और आज का खास दिन मुहर्रम इससे जुड़ी बातें भी आप तक पहुँचाई जाएगी।

और श्रोता चंबल चैनल पर शाम 7 बजे कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम में आज सुनेगा चर्चा बीज उपचार से जुड़ी और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 से जुड़ी। आज है क्योंकि शुक्रवार, तो आज सुनिएगा सजीव फोन इन सेगमेंट कार्यक्रम में, जिसमें आज का विषय होगा जल संरक्षण और कम पानी में फसल कैसे लेवे। और हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राम स्वरूप नरौलिया जी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आने वाली हर सुबह एक पैगाम लेकर आती है, जीवन को नया आयाम देकर जाती है। 26 जून 2026 शुक्रवार का ये दिन नमस्कार कोटा कार्यक्रम आपके अपने चंबल चैनल पर सुन रहे हैं आप, तो करते हैं स्वागत और नमस्कार। आज आपका साथ दे रही है रचना की ये आवाज, तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात।

श्रोताओ, सूरज रोज नया नहीं होता, लेकिन उसकी किरणें हर दिन नई उम्मीद देती हैं। हर सुबह एक नया सवेरा लेकर आती है, वही पुरानी सूरज के साथ, लेकिन किरणों का नया संदेश जीवन को उम्मीद से भर देता है। इसी तरह जीवन भी वही रहता है, बस नजरिया बदलते ही मंजिलें बदल जाती हैं। तो जीवन से किए गए वादे निभाते निभाते जीवन बस आगे बढ़ता जाता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा, अगर नौकरी मिल जाएगी, अगर प्रमोशन हो जाएगा, अगर परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे, अगर समस्या खत्म हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन इतने सारे अगर मगर के बीच सच्चाई ये नहीं लगती कि क्या खुश और सफल लोग हमेशा इंतजार करते हैं? नहीं ना, क्योंकि खुश और सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियों में अवसर खोज लेते हैं। और श्रोताओं, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं, ना कि इस बात पर कि आप कल क्या करेंगे।

तो श्रोताओं, क्यों ना आज एक छोटी सी बात मानी जाए, आज ये ना सोचा जाए कि आज हमें क्या क्या समस्याएं मिलेंगी, बल्कि फोकस इस बात पर किया जाए कि आज कौन सा एक काम बेहतर करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज कोई एक अध्याय पूरा करें, कर्मचारी हैं तो समय पर कोई एक काम पूरा करें, गृहिणी हैं तो परिवार के साथ कुछ सकारात्मक समय बिताएं, कोई एक अच्छी से डिश अपने परिवार को खिलाएं, और वरिष्ठ नागरिक हैं तो किसी युवा को अपने अनमोल अनुभव बांटें, और सब अपने अपने हिसाब से आज का एक काम सकारात्मक जीवन के नाम डिसाइड करके कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़े परिवर्तन लाती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि आने वाला कल ही अच्छा होगा, जबकि सच ये है कि हमारा बेहतर जीवन हमारे आज के निर्णय, आज की आदतें और दृष्टिकोण से ही बनता है। आज का एक संकल्प, शिकायतें कम, धन्यवाद ज्यादा, मोबाइल पे समय कम और अपने लक्ष्य पर अधिक समय, और इस दिन का कम से कम एक काम पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ आज यदि करेंगे तो अपने मन को और भी खुश पाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन का इंतजार नहीं करना होता, अपने आज को ही अच्छा बनाना होता है, वही कल की सबसे बड़ी सफलता बन जाता है, क्योंकि कल कभी आता नहीं, आज कभी रुकता नहीं, और जो आज को पहचान लेता है सफलता उससे दूर नहीं रहती। तो श्रोताओं, इसी सकारात्मक सोच के साथ मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने दिन को बेहतरीन बनाइए। फिलहाल एक अच्छा सा गाना आपके कानों तक कार्यक्रम में।

श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। और श्रोताओं, आज की बात अगर करें तो इस संसार में प्रत्येक जीव को जीने का समान अधिकार है ना। इस बात से आप सभी सहमत होंगे। और मनुष्य यानी कि हम अपनी बुद्धि और शक्ति के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि निर्बल प्राणियों की रक्षा करें, उन्हें कष्ट ना पहुंचाए। घर में घर सबका घर, हमारा प्यारा परिवार इस धरती पर। तो किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा देना केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि करुणा, संवेदना और मानवता के मूल्यों का भी अपमान है। तो दया और अहिंसा ही सच्चे चरित्र की पहचान है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, वही वास्तव में सही मायनों में मानव कहलाने योग्य है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि किसी भी जीव के साथ क्रूरता नहीं करेंगे, बल्कि सभी प्राणियों के साथ दया, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। और श्रोताओं, जून का महीना आ गया, यानी साल के लगभग 6 महीने बस अब खत्म होने को ही है। और जून से जुड़ी एक और खास बात की चर्चा किए बिना हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन आगामी रविवार 28 जून 2026 को होने जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चलाए जाने वाले इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को पोलियो मुक्त बनाए रखना और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। श्रोताओं, 28 जून यानी रविवार को इस दिन देश भर में बनाए गए नजदीकी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विशेष पोलियो बूथों पर सुबह 8 बजे से बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। और जो बच्चे रविवार को बूथ पर आने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अगले कुछ दिनों तक घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन की खुराक देगी। और ये दिन 29 जून से 1 जुलाई और 6 जुलाई तक हो सकते हैं। श्रोताओं, सभी को पता है कि भारत को मार्च 2014 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। हालांकि कुछ पड़ोसी देशों में अभी भी इसके मामले सक्रिय होने के कारण वायरस के दोबारा भारत में प्रवेश को रोकने के लिए ये अभियान निरंतर रूप से चलाया जा रहा है। और हम सभी की जिम्मेदारी है इसमें अपना पूरा सहयोग दें और बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलवाएं। दो बूंद जिंदगी की।

और श्रोताओं, 26 जून आज के दिन एक और महान व्यक्तित्व के नाम से जुड़ा है। जी हाँ, राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज, भारत के एक महान समाज सुधारक, दूरदर्शी राजा और सामाजिक न्याय के जनक। वे महाराष्ट्र की ऐतिहासिक रियासत कोल्हापुर के महाराजा थे और आज यानी 26 जून 2026 को देश भर में उनकी 152वीं जयंती मनाई जा रही है। और श्रोता, उनके जीवन से जुड़ी कुछ मुख्य बातों के बारे में बात करें तो सन 1902 में उन्होंने कोल्हापुर के प्रशासन में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए 51% आरक्षण लागू किया था। यह भारतीय इतिहास में वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतिगत आरक्षण का पहला ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य किया। गरीब और अछूत माने जाने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रावास खुलवाए ताकि जातिगत भेदभाव के बिना सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिल सके। श्रोताओं, उन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगवाया, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी और ना जाने कैसी कैसी प्रथाओं के खिलाफ जो कि समाज की कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। छत्रपति शाहू जी महाराज का जीवन हमें संदेश देता है, मानवता, समानता, साहस और सामाजिक परिवर्तन का एक ज्वलंत उदाहरण हम सभी बन सकते हैं। उनका

और श्रोताओ, आज के दिन से जुड़ा एक और नाम मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। यह महीना विशेष रूप से धैर्य, त्याग और सत्य के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देता है। श्रोताओ, ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन बलिदान की याद में मनाई जाती है। मुहर्रम हमें साहस, ईमानदारी, मानवता और न्याय के मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। अलग अलग मुस्लिम समुदाय इस अवसर पर अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्रद्धा और सम्मान के साथ इसे मनाते हैं। मुहर्रम सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, न्याय, धैर्य और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और यह सभी लोगों को शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश देता है।

और आइए श्रोताओं, नमस्कार कोटा कार्यक्रम में कुछ शहर की गतिविधियों के तरफ रुख किया जाए और सबसे पहले बात की जाए तापमान के बारे में। तो दिन का जो तापमान कल का अधिकतम नोट किया गया वो रहा 37.6 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस। और बात राजस्थान के मौसम की करें तो राजस्थान में मानसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही प्री मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ और नमी के असर से जयपुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। राजधानी में महज एक घंटे में 50 mm पानी बरसा और जबकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर और कई जगह पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। श्रोताओं, मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी कि आज भी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और एक अच्छी खबर यात्रियों के लिए, जी हाँ, सोगरिया धनबाद विशेष एक्सप्रेस अब नवंबर 2026 तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने गाड़ी संख्या 09821 और 09822 सोगरिया धनबाद और सोगरिया

श्रोताओं नमस्कार, कोटा कार्यक्रम आज के लिए बस यहीं तक दीजिए अब इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की। कार्यक्रम के लिए संयोजन तेजराम मीना जी का था, प्रस्तुति राजेश मावर की, और अब दीजिए इजाजत आपकी अपनी दोस्त रचना को भी कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार कोटा।

नमस्कार कोटा, ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। FM 102.103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन, कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत।

श्रोताओं नमस्कार। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इससे विभिन्न प्रसंग आप सुन रहे हैं। आज का प्रसंग लॉर्ड कर्जन का दरबार। कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ, पर मुझे तो दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए कलकत्ते में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि मंडलों से मिलना था, इसलिए मैं कलकत्ते में एक महीना ठहरा। इस बार मैंने होटल में ठहरने के बदले परिचय प्राप्त करके इंडिया क्लब में ठहरने की व्यवस्था की। इस क्लब में अग्रगण्य भारतीय उतरा करते थे, इससे मेरे मन में यह लोभ था कि उनसे मेलजोल बढ़ाकर मैं उनके दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए दिलचस्पी पैदा कर सकूंगा। इस क्लब में गोखले हमेशा तो नहीं, कभी कभी बिलियर्ड खेलने आया करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते में ठहरने वाला हूं, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए निमंत्रित किया। मैंने उनका निमंत्रण साभार स्वीकार किया, पर मुझे अपने आप वहां जाना ठीक न लगा। एक दो दिन बाट जोहता रहा, इतने में गोखले खुद आकर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा संकोच देखकर उन्होंने कहा, गांधी तुम्हें इस देश में रहना है, अतएव ऐसी शर्म से काम नहीं चलेगा। जितने अधिक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा सको तुम्हें बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे कांग्रेस का काम लेना है। गोखले के स्थान पर जाने से पहले इंडिया क्लब का एक अनुभव यहाँ देता हूँ। उन्हीं दिनों लॉर्ड कर्जन का दरबार हुआ, उसमें जाने वाले कोई राजा महाराजा इस क्लब में ठहरे हुए थे। क्लब में तो मैं उनको हमेशा सुंदर बंगाली धोती कुर्ता और चादर की पोशाक में देखता था। आज उन्होंने पतलून, चोगा, खान सामों की सी पगड़ी और चमकीले बूट पहने थे। यह देखकर मुझे दुख हुआ और मैंने इस परिवर्तन का कारण पूछा। जवाब मिला, हमारा दुख हम ही जानते हैं। अपनी संपत्ति और अपनी उपाधियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो अपमान सहने पड़ते हैं, उन्हें आप कैसे जान सकते हैं? पर यह खानसा में जैसी पगड़ी और बूट किस लिए? हम में और खानसामों में आपने क्या फर्क देखा? वे हमारे खानसा में हैं, तो हम लॉर्ड कर्जन के खानसा में हैं। यदि मैं दरबार में अनुपस्थित रहूं, तो मुझको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अपनी साधारण पोशाक पहनकर जाऊं तो वह अपराध माना जाएगा, और वहां जाकर भी क्या मुझे लॉर्ड कर्जन से बात करने का अवसर मिलेगा? कदापि नहीं। मुझे इस स्पष्ट वक्ता भाई पर दया आई। ऐसे ही प्रसंग वाला एक और दरबार मुझे याद आ रहा है, जब काशी के हिंदू विश्वविद्यालय की नींव लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखी गई, तब उनका दरबार हुआ था। उसमें राजा महाराजा तो आए ही थे, साथ ही भारत भूषण मालवीय जी ने मुझसे भी उसमें उपस्थित रहने का विशेष आग्रह किया था। मैं वहां गया था, केवल स्त्रियों को ही शोभा देने वाली राजा महाराजाओं की

पोशाक देखकर मुझे दुख हुआ था। रेशमी पाजामे, रेशमी अंगरखे और गले में हीरे मोती की मालाएं, हाथ पर बाजूबंद और पगड़ी पर हीरे मोती की झालरें, इन सबके साथ कमर में सोने की मूठ वाली तलवार लटकती थी। किसी ने बताया कि ये चीजें उनके राजाधिकार की नहीं बल्कि उनकी गुलामी की निशानियां थी। मैं मानता था कि ऐसे नामर्दी सूचक आभूषण वे स्वेच्छा से न पहनते होंगे, पर मुझे पता चला कि ऐसे सम्मेलनों में अपने सब मूल्यवान आभूषण पहनकर जाना राजाओं के लिए अनिवार्य था। मुझे यह मालूम हुआ कि कईयों को ऐसे आभूषण पहनने से घृणा थी और ऐसे दरबार के अवसरों को छोड़कर अन्य किसी अवसर पर वे इन गहनों को पहनते भी न थे। इस बात में कितनी सच्चाई थी सो मैं जानता नहीं। वे दूसरे अवसरों पर पहनते हों या न पहनते हों, क्या वायसराय के दरबार में और क्या दूसरी जगह, औरतों को ही शोभा देने वाले आभूषण पहनकर जाना पड़े, यही पर्याप्त दुख की बात है। धन, सत्ता और मान मनुष्यों से कितने पाप और अनर्थ कराते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग से आज आपने ये संदर्भ सुना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब सुनिए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से ये भजन।

0: सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा से। ये क्रमिक वाचन श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

FM 102.3.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और श्रोताओं, अब आपके लिए लेकर हाजिर हैं हम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुहाना सफर इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। और उनकी धुन कानों में पड़ते ही यादों के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं, जैसे बचपन की गलियां, दोस्तों की महफिल, परिवार का साथ और बीते हुए कुछ सुनहरे पल। यादों के इसी खूबसूरत सफर पर आइए आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत के साथ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सुहाना सफर। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म लम्हे का ये गीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक सुहाना सफर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, संगीत आनंद मिलन का है। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के लिखे बोलू को। आवाज उदित नारायण की है, फिल्म का नाम दिल चले।

श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्यक्रम में कार्यक्रम संबंधी सूचना आप तक अब पहुंचाते हैं हम। तो श्रोताओं, कल यानी शनिवार को 27 जून 2026 प्रातः 8:15 यानी 8:15 पर आकाशवाणी के चंबल चैनल से प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत में कल आप सुन सकेंगे लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता और सावधानी। इस विषय से जुड़ी जानकारी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित होंगे डॉक्टर आनंद नाकर। कार्यक्रम में विषय संबंधी प्रश्न या जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, डायल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर जो कि है 2941142 और एसटीडी कोड 0744। तो श्रोताओं, सुनना न भूलें शनिवार को यानी कि कल प्रातः 8:15 से 9:00 तक कार्यक्रम आपकी सेहत।

0: और श्रोताओं, फिल्म पापा कहते हैं इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए

8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों

0: को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द

0: दें नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 kHz पर ये प्रसारण है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कुछ राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी नचा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

श्रोता, इस लोकगीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। FM 102.3.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। प्रातः के 8:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

और श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कार्यक्रम में आज जो नगमे आपने सुने उनमें आवाजें थी पंकज उदास, जगजीत सिंह, आशा भोसले और चंदन दास की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल एफएम 102 व 103.6 मेगाहर्ट्ज तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य

0: विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹5,000 होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹3,500 होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का ₹2,000 है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: तीन दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन

0: करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
1: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब एक घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

FM 102.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर आपका रेडियो धड़क रहा है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी नगमे फिल्म संगीत में।

श्रोताओं, होश वालों को इश्क की खबर देते गीत के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जादू की बात करता गाना। गीत में आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, बोल समीर के हैं, संगीत जतिन ललित का, और फिल्म का नाम गुलाम।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और यहाँ आपको देते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। 27 जून 2026 शनिवार यानी कि कल प्रातः 8:15 से 9 बजे तक आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से श्रोता सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। जो विषय रहेगा वो होगा लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता और सावधानी। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आनंद नागर। विषय संबंधित कोई भी प्रश्न या जानकारी आप भी प्राप्त कर सकते हैं डायल करके हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स जो कि हैं 2941142, एसटीडी कोड 0744। कार्यक्रम का समय एक बार फिर से आपको बताएं, प्रातः 8:15 से 9 बजे तक 27 जून 2026 शनिवार यानी कि कल। कार्यक्रम का नाम आपकी सेहत।

चंबल चैनल पर फिल्म संगीत का ये सफर है और अब जो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें आवाज उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की है। संगीत विशाल शेखर का और बोल कौसर मोनीर के। फिल्म का नाम टशन।

FM 102 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर अब समय है बहनों के अपने कार्यक्रम महिला जगत का। आइए सुनें।

स्वागत है हमारी प्यारी सखियों का उनके अपने ही कार्यक्रम महिला जगत में। और महिला जगत में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी सरिता। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे, क्योंकि हुड़दंग मचाने वाले हमारे नन्हे बालकों के स्कूल अब खुलने वाले हैं, तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सखियों बच्चों की नटखट और चुलबुली जो आदतें होती हैं उनसे घर में रौनक होती है, लेकिन बच्चों का व्यक्तित्व व्यवहार और भविष्य काफी हद तक उनके घर के वातावरण से प्रभावित होता है ना सखियों? घर ही वह पहला स्थान है जहां बच्चा जीवन के मूल्यों आदतों और सामाजिक व्यवहार को सीखता है। इसीलिए घर का वातावरण बच्चों के मानसिक भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सखियों यदि घर का वातावरण प्रेम सहयोग सम्मान और अनुशासन से भरा हो ना, तो बच्चों में आत्मविश्वास जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच का विकास होता है। ऐसे बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं तथा समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। सखियों माता पिता का स्नेह और प्रोत्साहन बच्चों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने में सहयोग करता है। इसके विपरीत यदि घर में लगातार झगड़े तनाव उपेक्षा या नकारात्मकता का माहौल हो तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे बच्चे भय चिंता क्रोध या आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कई बार यह प्रभाव बड़े होने के बाद भी बना रहता है सखियों, और यह प्रभाव उनके संबंधों शिक्षा और करियर को भी प्रभावित करता है। घर का शैक्षिक और सांस्कृतिक वातावरण भी बच्चों के विकास पर असर करता है। पढ़ने लिखने की आदत नैतिक शिक्षा और सकारात्मक संवाद बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देते हैं। वहीं माता पिता का व्यवहार बच्चों के लिए आदर्श बन जाता है, जैसे वे अनजाने में अपनाने लगते हैं। और देखिए कि कई बार हमें लगता है कि बच्चा हूबहू अपने पिता और माता की तरह बात करता है उठता है बैठता है, तो वो अनजाने में ही उनके व्यवहार उनके स्वभाव उनकी आदतों को अपनाता है। एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना माता पिता के हाथ में है। इसके लिए बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनकी बात सुनें, उन्हें महसूस करवाएं कि उनकी राय भी महत्वपूर्ण है। सखियों बच्चा उपदेश से नहीं देखकर सीखता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा धैर्यवान और सम्मानजनक बने तो हमें भी वैसा ही बनना होगा। घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए सखियों जहां बच्चा बिना डरे अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके, उसकी गलती पर उसे समझाएं ना कि क्रोधित हो, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें और असफलता के समय उसका साथ दें। अपनी इच्छाओं को सखियों अपने बच्चों के जरिए पूरा करने का प्रयास ना करें। अगर वो अपनी पसंद का लक्ष्य पाना चाहे तो उसका साथ दें, उसका सही मार्गदर्शन करें, उसे ये आश्वासन दें कि सफलता या असफलता कुछ भी हो आप उसके साथ हैं। असफलता से हारना नहीं रुक कर फिर से चलना सिखाएं। सखियों घर का वातावरण किसी पौधे के लिए मिट्टी और खाद की तरह होता है। यदि नींव मजबूत और उपजाऊ है तो बच्चा एक सफल संतुलित और जिम्मेदार इंसान के रूप में विकसित होगा। याद रखें आप बच्चों को जो वातावरण देते हैं वही भविष्य में उसके व्यक्तित्व के रूप में दुनिया के सामने आता है। सखियों

खुशहाल घर ही एक बेहतर समाज की नींव है। तो सखियों, सबसे पहले हम अपने घर को खुशहाल करने के लिए स्वयं खुश रहें। तो आइए सखियों, हम और आप मिलकर खुश होने के लिए एक थेरेपी लेते हैं। जानते हैं वो थेरेपी क्या है सखियों? वो थेरेपी है म्यूजिक थेरेपी। तो आइए हम और आप मिलकर साथ में लेते हैं ये म्यूजिक थेरेपी।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: सही बात है सखियों, वित्तीय जानकारी हमें होनी चाहिए और वित्तीय साक्षरता भी होनी चाहिए। सखियों, पैसा कमाना सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, हमें पैसे की सही जगह इन्वेस्ट करना हमें चाहिए ताकि हमारे पैसे की बढ़ोतरी हो, वो जितना है उतना ना रहे। हम चाहे नौकरी पेशा हो या घर पर रहती हो, हमें थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए। तो सखियों, क्या करें कैसे करें, इन्हीं सब की जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती अंजलि कुमारी जी को, जो हमें बताएंगे वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत।
4: बदलते समय के साथ महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता अब एक विकल्प नहीं जरूरत बन गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश केवल विशेषज्ञों द्वारा या अधिक आय होने पर ही किया जा सकता है, लेकिन सखियों, वित्तीय अनुशासन ही वह चाबी है जो आर्थिक आजादी का दरवाजा खोलती है और हम भी इस दरवाजे से सफलता तक पहुंच सकते हैं। आज हम निवेश के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जरूरी है। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अंजलि पाल। आप बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अंजलि जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि वित्तीय साक्षरता क्या है।
5: वित्तीय साक्षरता पहले तो सुनने में ना एक बहुत भारी शब्द लगता है, तो हम इसे थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पैसे की समझ। मान लीजिए आप महीने में 100 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए आपका किराया खर्च हो रहा है, 15 रुपए की आपकी राशन आ रहा है, 20 रुपए कुछ और किसी और खर्चे में खर्च हो रहा है। तो अब जो राशि आपके पास बचती है वो क्या होती है? आपकी बचत। उस बचत को आप किस तरीके से निवेश कर रहे हैं, जो भी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखकर उस बचत की हुई राशि को ध्यान पूर्वक निवेश करना, बस अगर आपको ये ज्ञान है, यही वित्तीय साक्षरता है।
4: जी, एक महिला के लिए वित्तीय रूप से साक्षर होने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित है या उससे कहीं अधिक जो महिला के लिए जानना आवश्यक है?
5: बैंक खाता खोलना सिर्फ एक शुरुआत है।
4: जी,
5: बैंक में खाता खोलकर हम अपनी एक आदत बनाते हैं कि मुझे बैंक में जाना है और पैसा बचाना हमें शुरू करना है। ये आपकी पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है उसको समझना कि मुझे जो अपना पैसा निवेश करना है वो किस तरह से करना है।
4: जी।
5: तो बैंक खाता खोलना सिर्फ आपकी शुरुआत है, वहां पे आपको रुकना नहीं है, उससे आपको आगे बढ़ना है। बैंक में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पे आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो और रिस्क फ्री होके कर सकते हो। तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, बैंक में जाना है, पूछना है, समझना है, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं हमें हल नहीं मिलेगा, हमें रास्ता नहीं दिखेगा।
4: तो कोई भी बात हो आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो भारत में सदियों से महिलाएं बचत के रूप में सोना या घर में नकद जमा करती आई हैं। आपके अनुसार पारंपरिक बचत और आधुनिक बैंकिंग निवेश में क्या बेहतर है और क्यों?
5: सोना जब हम खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ज्वेलरी भी आ गई और इन्वेस्टमेंट भी हो गया।
4: जी।
5: और ज्वेलरी तो जरूरत है हमारी, उसके लिए तो मैं मना नहीं करूंगी कि आप नहीं खरीदें, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। अब जो हम ज्वेलरी खरीदते हैं वो ज्यादातर लॉकर में रखी रहती है।
4: जी।
5: बहुत कम हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लॉकर का आपको रेंट भी पे करना है, वो खर्चा अलग है। मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई और आपको वो बेचना

0: महंगा पड़ गया, तो एक तो तुरंत बेचना थोड़ा मुश्किल होता है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको उसका भाव अच्छा मिल गया, आपने अच्छी जगह पे बेच दिया, तो जो आपने मेकिंग चार्जेस पे किया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। और सुनहार जो भी खरीद रहा है वो 8-10% तो वैल्यू वैसे भी उसकी कम कर देगा
1: जी।
0: तो यहाँ आपका नुकसान हो गया। अगर आपको गोल्ड खरीदना है और आभूषण के लिए खरीदना है तो आप खरीदें, लेकिन आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है गोल्ड ETF
1: जी।
0: ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। इसमें आप गोल्ड खरीदते हैं, अब आपको फायदे क्या हैं इसके, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं पे करने, आपको प्योरिटी की टेंशन नहीं लेनी, आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सोना कहाँ पे रखूंगी, ठीक है, और आप प्योर गोल्ड खरीद रहे हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, और आप जब चाहें आपको जब जरूरत पड़े उसके हिसाब से आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, ये आपका पहला फायदा हो गया। अब आप नगद की बात कर रहे हैं, नगद अब आप बताइए आपने 100 रुपए आज रखे
1: जी,
0: 10 साल बाद वो 100 रुपए ही रहेंगे, बल्कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 10 साल बाद महंगाई तो बढ़ गई है
1: जी,
0: ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही 100 रुपए अगर आपने FD में रखे 10 साल के लिए तो वो दोगुने हो जाएंगे, अगर वही पैसे आपने म्यूचुअल फंड में SIP में लगाए तो वो 3 गुने 4 गुने भी हो सकते हैं। तो हमें पैसे को बढ़ाना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, तो हमें ऐसे मोड देखने हैं जहां पे हम अपने पैसे को ग्रोथ दे सके, वृद्धि दे सके। और अगर आप मान लीजिए बैंक में FD करवाते हैं, नगद आपने पैसा जोड़ा, आपने उसकी FD करवाई, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको FD विड्रॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप उस पे लोन ले सकते हैं,
1: FD पे
0: लोन ले सकते हैं, आपकी जो भी राशि होती है 90% तक आपको उस पे लोन मिल जाता है और सिर्फ 1% आपको ऊपर से ब्याज देना पड़ता है। मान लीजिए आपकी 5% पे आपको बैंक ब्याज दे रहा है आपकी FD पर, लेकिन आप जब लोन लेंगे तो आपको 6% पे मिलेगा, तो आप कितना पे कर रहे हो, सिर्फ 1%। आपकी FD भी रह गई, आपका काम भी हो गया, जो भी आपकी जरूरत थी आपने लोन लेके पूरा कर ली, आप चाहो तो धीरे धीरे अपना लोन खत्म कर दो, तो आपकी जो बचत थी वो रह गई आपके पास, आपका काम भी हो गया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
1: अंजलि जी, अक्सर महिलाएं निवेश की शुरुआत करने से डरती हैं या इसे जटिल समझती हैं, निवेश करने की पहली सीढ़ी या पहला चरण क्या होना चाहिए, खासकर उनके लिए जिनके पास पूंजी कम हो।
0: डरना नहीं है हमको, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें सवाल पूछना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आपको नहीं मालूम, बस आपको इतना पता है कि मुझे पैसा बचाना है। अब आप कहाँ जाएंगे, आप बैंक जाएंगे, आप वहां जाके बताएंगे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा मुझे बचाना है, अब आप मुझे स्कीम बताओ, ठीक है। तो पहली सीढ़ी तो हमारी ये हो गई कि हमें बैंक खाता खुलवाना है
1: जी।
0: दूसरी सीढ़ी ये हो गई कि हमें बैंक में जाके पूछना है कि हमें बताइए कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी कम है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप महीने में सिर्फ 500 रुपए इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए दो ऑप्शन मैं आपको दूंगी, बहुत हम इसको जटिल नहीं बनाएंगे, दो ऑप्शन है। अगर आपको ये है कि मुझे कम समय के लिए राशि जमा करनी है, मुझे इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो आप RD का ऑप्शन चूज करो। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे हर महीने 500 रुपए जमा करना है लेकिन लंबे समय तक, ताकि मुझे लंबा लाभ हो और ये पैसा मुझे भविष्य में काम आए, तो आप म्यूचुअल फंड और SIP में इन्वेस्ट करो
1: जी।
0: अगर आप हम न्यूनतम राशि की बात करें तो ये सबसे अच्छे ऑप्शन है
1: जी। महिलाओं को अपने निवेश को सुरक्षित और विकसित करने के लिए जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन बनाने के लिए क्या सलाह देंगे आप?
0: इंग्लिश में एक वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं विविधीकरण। तो जो हमारा पैसा है हमें उसको डाइवर्सिफाई करना है, हमारे पैसे को हमको अलग अलग जगह पे निवेश करना है, एक जगह पे निवेश नहीं करना है
1: जी।
0: अगर आपका एक गोल है कि मुझे कम समय के लिए पैसा निवेश करना है तो आप RD चूज करो, मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड चूज करो। लेकिन निवेश करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आयु कितनी है, हम कितना जोखिम उठा सकते हैं, तो वो देखते हुए हमें निवेश करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो मार्केट रिस्क पे बेस्ड होता है
1: जी,
0: ठीक है। तो हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उस पर अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, कम समय के लिए वहां पे जोखिम रहता है
1: जी।
0: आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद एक और चीज होती है, आपको अपना एक इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करना है। इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करने से भी पहले मैं बोलूंगी कि आपको इंश्योरेंस करवाना है। बैंक में गवर्नमेंट ने इतनी सारी अच्छी स्कीम्स स्टार्ट की हैं जिनके बारे में आपको पता

होना चाहिए। इंश्योरेंस में आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाइए, लाइफ इंश्योरेंस करवाइए। गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों में आपको दो दो लाख का कवरेज मिलता है। तीसरी एक बहुत अच्छी स्कीम है अटल पेंशन योजना। अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो और आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो आप अपने आप को अटल पेंशन योजना में रजिस्टर करिए। एक अवधि के बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तब आपको 5,000

0: वित्तीय प्रबंधन में इमरजेंसी फंड क्या है, अभी आपने हमें बताया था, और इसका क्या महत्व है?
1: इमरजेंसी फंड हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो हमें पैसा काम आएगा ना, हमें हम प्लान्ड नहीं है कि हमें ये जरूरत पड़ जाएगी तो उस टाइम पे हम फंड कहाँ से लाएंगे, तो उस टाइम पे इमरजेंसी फंड आपको काम में आता है।
0: तो आपको कैसे तैयार करते
1: हैं? हाँ, अब आप पहले तो ये डिसाइड करिए इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो आपका कम से कम 6 महीने का या 12 महीने का जो आपको खर्चा है वो आप डिसाइड करो कि मेरा इतना खर्चा है, वो इमरजेंसी फंड आपको उतना तैयार करना है। कैसे तैयार होगा? इमरजेंसी फंड का मतलब क्या हुआ कि पैसे की जरूरत कभी भी पड़ जाएगी मुझे, तो उसका
0: और मुझे तुरंत मिल जाए
1: तो उसका सबसे अच्छा तरीका है FD। अब बैंक में FD करवाओ। देखो, इमरजेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नौकरी जा सकती है। अब बीमारी का हम अगर बोलते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। इमरजेंसी फंड तो हो गया कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको तैयार कर रहे हैं कि हमें कहीं किसी से मांगना नहीं पड़े
0: जी
1: पैसा, जरूरत के समय पे हमारे पास पैसा हो। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा और इंश्योरेंस कवर आपका रहेगा तो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपका खर्चा उठाएगी और आपका इमरजेंसी फंड भी इंटेक्ट है
0: जी।
1: तो दोनों जगह हमें फायदे हो रहे हैं। तो इमरजेंसी फंड तो हमको तैयार करना ही है धीरे धीरे करके, लेकिन हमें इंश्योरेंस की तरफ भी ध्यान रखना है कि हमको वहां से भी सुरक्षा मिले। कुल मिला के हमें खुद की सुरक्षा के बारे में सोचना है हर तरीके से, आर्थिक रूप से हम खुद को जिस तरीके से भी सुरक्षित कर सकते हैं, और उस सुरक्षा की जो जो योजनाएं हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उन पे अमल करना है।
0: बिल्कुल, स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करें लेकिन उसमें जानकारी होना चाहिए और बैंक आपके साथ है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, डिजिटल बैंकिंग और साइबर क्राइम से स्वयं को कैसे बचाएं? बहुत सी महिलाएं तो फोन पे क्रय विक्रय इसलिए नहीं करती कि मुझसे गलती हो जाएगी या मेरा बैंक खाता खाली हो जाएगा, तो क्या सतर्कता बरते हैं?
1: डिजिटल बैंकिंग जो है वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है, हम इससे बच नहीं सकते हैं क्योंकि इसने हमारी लेन देन की जो प्रक्रिया उसको बहुत आसान कर दिया है। पर हम थोड़े से समझदार बन सकते हैं, जो भी हम अगर हम UPI यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, हमें उसको समझदारी से यूज करना है। जो भी फ्रॉड या स्कैम हमारे साथ में होते हैं वो उनका मेन जो कारण होता है वो लालच होता है
0: जी।
1: अगर हम लालच कर गए तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, ये मेन रीजन होता है। तो सबसे पहले तो हमें खुद को समझदार बनाना है, अपना OTP भी कहीं शेयर नहीं करना है, जो भी पासवर्ड हम बना रहे हैं उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आसानी से किसी को पता ना चले। अपना ATM कार्ड है उसका CVV पिन या उसका जो नंबर है वो पिन नंबर है वो किसी से भी हमको शेयर नहीं करना है। आजकल एक और चीज हो रही है कि हम अपना खाता बेच देते हैं, ये चीज कि हमें ऑफर किया जाता है कि आप का जो बैंक अकाउंट है आप मुझे दे दो, मैं आपको 5,000 या 10,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो वो 5,000 या 10,000 रुपए के लिए हम अपना खाता भी सेल कर देते हैं। तो वो जो इस तरह के स्कैम है ना, उनसे हमको बचना है, हमें अपनी ही समझ से बचना है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है 1930 1930, ये नंबर है, आप इस पे कॉल करें, उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराएं। विद इन 24 आवर्स आप अपनी कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं वहां पे, उसके बाद भी करा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप कंप्लेन लॉन्च करवाएंगे उतनी ही जल्दी आपका पैसा वापस आने का चांस रहता है।
0: अंजलि जी, कई बार ये कहा जाता है कि बैंक आपका ATM बंद कर देगा या आपका वो खाता बंद हो जाएगा, तो क्या ऐसी कभी बैंक की तरफ से कोई बात की जाती है?
1: कभी बैंक आपको कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि हम आपका खाता बंद कर देंगे या आपका ATM ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बैंक के पास तो इतने सारे कस्टमर्स होते हैं
0: जी,
1: है ना, वो हर एक इंसान को फोन करके नहीं बताते हैं, वो आपको मैसेज के जरिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी बैंक ऐसा नहीं बोलता कि हम आपका खाता फ्रीज कर रहे हैं, फोन करके आपको कभी नहीं बोलेगा। लेकिन आपको डाउट होता है आप सीधे बैंक आइए, कंफर्म करिए कि क्या आपने मुझे कॉल किया है, ठीक है, ये चीज कंफर्म करिए। और दूसरी चीज, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आप अगर बैंक विजिट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है उस पर कॉल करिए और अपना जो अकाउंट है वो तुरंत फ्रीज करवाइए कि आपकी राशि कट चुकी है लेकिन और आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए, तो आप उसको कॉल करके कंप्लेन लॉन्च कराओ। दूसरा तरीका होता है आपका, जो भी नियर बाय साइबर सेल पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप कंप्लेन करवाओ, वहां उस कंप्लेन की कॉपी लो और उस एक कॉपी को आप बैंक में भी सबमिट करो। तो ये जो चीजें हैं थोड़ा हमें इनका ध्यान रखना है
0: जी, सतर्कता बरतें।
1: सतर्कता बरतें
0: अंजलि जी,

0: अंत में आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी भी अपने वित्तीय फैसले लेने में दूसरों पर निर्भर हैं, साथ ही वे अपनी आर्थिक आजादी की शुरुआत कैसे करें?
1: जब हम पहली बार किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो हमें कठिन लगती है
0: जी।
1: पहली बार हम कोई भी काम करेंगे हमें वो कठिन लगेगा। जब मैं यहाँ पहली बार बोलने आई वो मेरे लिए कठिन था, तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी।
0: जी
1: अब महिलाएं जो होती हैं वो ज्यादातर, हम महिलाएं दूसरों के लिए जीना पसंद करती हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो सिर्फ आप मजबूत नहीं हैं, आप अपने परिवार को भी मजबूत बना रहे हैं। हमें डरना नहीं है, हमें शुरुआत करनी है। आप कोशिश करो, जैसे आज आपने मुझे सुना, आज ही आप बजट बनाओ कि मेरी आय इतनी है, मेरा खर्चा इतना है। मैंने बजट बना लिया, अब मुझे बचत करनी है। अब आप बैंक जाओ, बैंक जाके आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जाती हूँ सब्जी लेने के लिए एक आंटी के पास में, तो वो आंटी को जब पता चला मैं बैंक में हूँ, उन आंटी ने मुझे बोला कि बेटा मेरा खाता नहीं है, मेरा खाता खुलवा दो। हमने उनका खाता खुलवा दिया, उनका बैंक आना शुरू हो गया।
0: जी
1: वो हर महीने छोटी छोटी राशि जमा करती थी, तो कुछ समय बाद वो आई और आके बोलती है कि मैंने इतनी राशि जमा कर दी है, अब मुझे इसको बढ़ाना है, तो आप मुझे बताओ मैं कैसे बढ़ाऊं इसको। तो उन्होंने एक FD बनवा ली अपनी। फिर उसके बाद उनको अपने ऊपर ये विश्वास हो गया कि मैं हर महीने इतनी राशि जमा कर सकती हूँ, तो उन्होंने एक RD भी ओपन करवा ली। अब आज का समय है, वो RD भी है उनकी, FD भी है, वो जितने भी इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, इंश्योरेंस उन्होंने करवाए हुए हैं। तो जब भी वो आती हैं वो मुझसे जरूर पूछती हैं कि बेटा मेरे पास कितना पैसा है, और जब मैं उन्हें बताती हूँ तो उनके चेहरे पे एक चमक होती है, और वो चमक होती है आत्मविश्वास की
0: जी।
1: कि ये मेरे पास पैसा है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, ना मुझे अपने पति से मांगना पड़ेगा, ना मुझे अपने बच्चों से मांगना पड़ेगा। तो आप अपना जो छोटे छोटे आर्थिक फैसले जो होते हैं ना वो खुद से लेना शुरू करिए। जब आप वो छोटे छोटे फैसले खुद से लेना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, और वो आपके लिए ही अच्छा नहीं है, वो आपके परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि समय आने पर आप उनको भी मदद कर सकते हैं।
0: जी, छोटे छोटे कदम से ही हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी
1: बन
0: बन
1: सकते हैं।
0: सकते हैं। अंजलि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सखियों, हमने अंजलि जी से जाना कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी बचत से मुनाफा कमा सकते हैं। तो सखियों, बचत करना हम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करेंगे, और अंजलि जी के द्वारा बताए गए नुस्खों को अपनाएंगे। सखियों, अब बात चलते हैं रसोई की ओर, क्योंकि बैंक की भी बात हो गई और भी बहुत सारी बातें हो गई। तो सखियों, रसोई घर का वह हिस्सा है जहां ना केवल भोजन बनता है बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी वहीं तय होता है। सखियों, बारिश के दिन आने वाले हैं, मसालों को एयर टाइट डब्बों में रखें ताकि नमी और कीड़ों से उन्हें बचाया जा सके। और हमारी रसोई में जगह जगह कॉकरोच आ जाते हैं, तो हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के बजाय आप कोनों में तेज पत्ता और लौंग रख सकते हैं ताकि कॉकरोच दूर रहें। और साथ ही साथ रासायनिक चीजों के बजाय अगर आप सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू का इस्तेमाल घर की साफ सफाई में करें, रसोई की साफ सफाई में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सखियों, गैस पाइप और रेगुलेटर की जांच साल में एक बार जरूर करवाएं, और घर से बाहर जाते वक्त रेगुलेटर बंद कर दें। अपनी रसोई के हर कोने की सफाई जरूरी है सखियों, लेकिन आप रोज ना करके थोड़ी थोड़ी अगर रोज करेंगी तो थकेंगी भी नहीं और घर और रसोई भी चमचमाती रहेगी। सखियों, आगे बातें और भी हैं लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा, तो अगली कड़ी में आपसे ढेर सारी बातें फिर करेंगे। तो हाल फिलहाल दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी सरिता को। नमस्कार।

महिला जगत। ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे FM 102 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और आइए श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की ओर।

0: फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं? तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार।
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंकर नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं नहीं मैम, मैं दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका एक प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, इतना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत का काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: है। नहीं वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता। हमारा जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, फिर जब बिजली चली जाती है तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमलता जी का गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर,
0: बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है लॉन्ड्री का और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है की आवाज में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते
0: ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले।

0: मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
1: क्या बात है,
0: अंतरा सुनाया।
1: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
0: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा, सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई ओ बोलण वाले मिलदे ने, चुप कोई कोई, ताना मेला मंदा मेला, ताना मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई ओ सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई।
1: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
0: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, क्या कर सकते हैं, क्या है? नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता, गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी, लड़के की भेष रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती हैं ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग आप जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल हैं, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ जावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ। जी
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, मतलब की जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंड फादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितनी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ाव कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे लीडर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गाँव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी आप गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत,
0: मोहम्मद अजीज की आवाज़।
1: जी
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे, लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: चंद्रदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला और

0: फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102 103.6 MHz तथा मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, 12 बज चुके हैं, अब समय है चंबल चैनल पर कि आपको सुनवाएं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की आज की कड़ी।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
1: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: स्टीफन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
3: हैप्पी बर्थडे टू यू स्टीफन।
4: हाउ आर यू?
5: हैप्पी बर्थडे स्टीफन।
4: थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस।
5: थैंक यू जॉन। थैंक यू सो वेरी मच। हाय मार्टिन, हाउ आर यू?
2: ओह फाइन फाइन।
5: थैंक्स फॉर कमिंग इन। प्लीज कम इन।
3: यस यस। व्हाई नॉट?
2: कम कम। हे
3: कम
2: जॉन, प्लीज कम हियर।
3: ओह श्योर।

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको

0: अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ
1: जी।
0: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
1: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
0: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं, नहीं।
0: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़

0: संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
1: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए, सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो।

0: अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
8: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
8: रोज बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
8: कि अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
6: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
8: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही एकदम सही।
8: वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
8: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
8: विटामिन डी।

0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
1: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: बिल्कुल,
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
2: हाँ,
3: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना,
2: तेज चलती है, तेज चल रही है।
1: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
1: मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
1: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
2: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
1: नहीं
0: है
1: करता।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
1: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊं कि नहीं आऊं?
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: डर
0: जाती
2: है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
1: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तर्ज है, फिल्म का नाम सिलसिला।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है।
1: दिन का एक बजने को है, अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और

0: राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में कर्बला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिये मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें कर्बला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

येसुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की यह कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये है हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं, तो शुरू हो जाइए। किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मैं और मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती है कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो

जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमीन का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो सूरत गुजरात में है और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पेच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग

उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता है जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है।

है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाई गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता है जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता को ये कंफ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये है जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर टान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहां गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी

बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना?

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ऊंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स के बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल गई।

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बंधु।

0: इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यही उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया? कौन लाया?
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त

0: प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
0: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business.
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल

0: इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: प्रकृति से बोल रही हैं, आइए सुनें सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: बोल थे संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। तो फिलहाल मुझे

0: इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
1: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ।
1: क्या बात है, शुक्रिया।
0: विविध भारती की खास तौर पर
1: जी,
0: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ। और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा।
1: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ।
1: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप योगा करती है, योग से जुड़ी हुई है?
0: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार के साथ खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: पूनम यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जिंदगी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में तो मतलब बस हाउस वाइफ में मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो होती ना, अद्भुत है
1: जी,
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तो बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो सुनने
1: में? मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ।
0: गाती भी है?
1: बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, देवी जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, लट सी बहारी आई, बरदाने मांगी आई, लट सी बहारी आई, बरदाने मांगी आई, मांगी बरे सिंदूरा मैं देवी जी से मांगी आई, देवी जी के मंदिर में लट सी आई।
0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: जी जी।
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सुरजीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ है, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंस

0: फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसर से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे

0: पर खुशियां लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले, तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जो संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी, जी.

0: तौबा तौबा रे दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर के कर लेते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
0: बहुत बचपन से, जब
1: बचपन।
0: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
1: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
0: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया।

0: मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना जो दिनचर्या है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके बदौलत आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब हम योग करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसु, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

गुजर जाए दिन। तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत

सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है। इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं हुआ हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुड़की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटाबूंदी का चंबल चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युव वाणी।

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों. आज सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी.
1: और आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं मुनमुन.
1: और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार.

0: अच्छा राहुल, आज का दिन कुछ खास है ना?
1: जैसे कि
0: सुबह से ही सोशल मीडिया पे ना माँ कामाख्या की वीडियोस और श्रद्धालुओं की भीड़ और जयकारे देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे मतलब अपनी तरफ जैसे खींच रहे हो।
1: बिल्कुल मुनमुन, क्योंकि आज ही वो शुभ दिन है जिसका लाखों श्रद्धालु पिछले 3 दिनों से, बल्कि यूं कहें 3 दिनों से क्यों, कई मतलब पूरा साल इंतजार करते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आज है अंबुवाची पर्व, और अंबुवाची पर्व के बाद आज माँ के मंदिर के कपाट के दर्शन फिर से खोल दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हर भक्त के चेहरे पर खुशी और श्रद्धा साफ साफ दिखाई दे रही है।
0: अच्छा राहुल, हमारे कई दोस्त हैं, वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंबुवाची जो पर्व है ये क्या है और इसका महत्व क्या है।
1: बिल्कुल, तो बता देते हैं हमारे दोस्तों को। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपनी देह को त्याग दिया था, तब भगवान शिव उन्हें अपने कंधों पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे थे, और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई हिस्से किए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई।
0: और राहुल, मान्यता है कि असम के कामाख्या धाम में माता का योनि भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्ति सृजन और मातृत्व का सबसे बड़ा

0: प्रतीक माना जाता है। हर साल आषाढ़ महीने में 3 दिनों तक ये मनाया जाता है और माँ रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन पूरे विधि विधान के साथ दर्शन फिर से शुरू होते हैं।
1: और दोस्तों, यही कारण है कि आज का दिन इतना पावन माना जाता है। आज जब माँ के कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु दूर दूर से उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन माँ का आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि नई ऊर्जा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलता है इस दिन।
0: हाँ, और मुझे तो ना स्पेशली याद है सबसे सुंदर बात क्या लगती है,
1: क्या मुनमुन?
0: कि ये जो पर्व है ना,
1: हाँ,
0: ये हमें सिखाता है कि नारी केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि सृष्टि की आधारशिला है।
1: बिल्कुल मुनमुन, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही। और दोस्तों, अम्बुआची मेला नारी शक्ति, प्रकृति और जीवन के सृजन का सम्मान करने का ही तो संदेश हमें देता है। और शायद यही वजह है कि ये पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं होता है बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का भी एक अनमोल उत्सव है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी भी माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी श्रोताओं के जीवन में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बनाए रखें।
1: तो बने रहिए हमारे साथ और कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज के कार्यक्रम में आप सभी के लिए बहुत कुछ है खास। फिलहाल ले चलते हैं आपको इस गाने के पास।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों आज हम एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे दूरदर्शी राजा की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने महलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित और वंचित समाज के उत्थान में लगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के प्रणेता राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की।
1: जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शाहू जी महाराज। दोस्तों इनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। ये केवल कोल्हापुर रियासत के राजा नहीं थे, बल्कि ये सही मायनों में आम जनता के, गरीबों के राजा थे। और यही कारण है कि इनकी जन कल्याणकारी नीतियों को देखकर इन्हें राजर्षि यानी कि राजाओं में ऋषि की एक महान उपाधि दी गई थी।
0: बिल्कुल राहुल, और आज जब हम देश में ना सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं ना, तो हमें शाहू जी महाराज के उन ऐतिहासिक फैसलों को याद करना होगा जिन्होंने इतिहास बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों सन 1902 में इन्होंने देश में पहली बार अपने प्रशासन में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत की थी। इनका मानना था दोस्तों कि जब तक समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण असंभव है।
0: बिल्कुल, शाहू जी महाराज जानते थे कि समाज को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है शिक्षा। इसलिए उन्होंने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य कर दिया। गरीब और पिछड़े छात्रों के रहने के लिए उन्होंने जाति मुक्त हॉस्टल्स बनवाए ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे।
1: और दोस्तों इतना ही नहीं, इन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई और समाज में छुआछूत को मिटाने के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए। दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों और प्रतिभा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने बाबा साहेब के सामाजिक कार्यों और उच्च शिक्षा में भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद की।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं तो ये केवल उन्हें याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी है। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा, समानता और सामाजिक सद्भाव की एक मजबूत और विकसित समाज की पहचान है।
1: और दोस्तों छत्रपति शाहू जी महाराज का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाए। इन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि बदलाव लाने के लिए शक्ति नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सोच और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। फिलहाल दोस्तों वक्त फिर से हो चला है गीत संगीत की दुनिया में चलने का, तो चलिए ले चलते हैं आपको अगले गाने की ओर।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, लोक संगीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। और आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी गायकी से पारंपरिक लोक संगीत में एक नया जोश भर दिया। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं युवा लोक गायक मोहित मेहता और इनसे बातचीत कर रहे हैं अभिषेक तिवारी।
1: राजस्थान की लोक संस्कृति के संदर्भ में जब भी हम बात करते हैं तो एक समृद्ध विरासत जो राजस्थान की है

0: उसका खाका कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में जो है वो अपने आप ही खिंच जाता है, और उसमें फिर ऐतिहासिक विरासतें हो या फिर हम कह सकते हैं कि वहां की अपनी अनूठी संस्कृति। और जब लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो उसमें लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, ये सब जो हैं ये भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है जो लोक संस्कृति और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सक्रिय है। युवा संगीत साधक मोहित राही इनका नाम है, जो आज अपनी मेहनत, साधना और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के लिए एक विशेष पहचान बना चुके हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भैया।
0: विद्यालयी जीवन से शुरू हुई मोहित राही जी की संगीत यात्रा ने उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचाया। स्वर्ण पदक विजेता लोक एवं शास्त्रीय संगीत के शोधकर्ता तथा आरोहण फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में वे न केवल संगीत साधना कर रहे हैं, बल्कि राजस्थान की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। आइए आज इन्हीं से जानते हैं इनके संगीत के सफर, उपलब्धियों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में। मोहित जी, आपके संगीत जीवन की शुरुआत कैसे हुई और संगीत के प्रति जो आपकी रुचि है वो कब विकसित हुई?
1: अभिषेक भैया, पहले तो मैं कोटा आकाशवाणी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मेरा जो संगीत का सफर और जो मेरा संघर्ष और जो हमारी एक लोक परंपरा है राजस्थान की, उससे मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, उसको आप लोगों तक पहुँचाने के लिए एक बहुत अच्छा मंच वो बनेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरा संगीत का सफर, मेरी जो रुचि थी वो मुझे 7th क्लास में, जब हमारे स्कूल में आदरणीय मेरे बहुत प्रिय गुरुजी लक्ष्मण सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संगीत की तालीम दी। तो उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा ये था कि स्कूल में जब प्रार्थनाएं हुआ करते थे तो हम अक्सर साज उठाया करते थे, मंच तक पहुंचाया करते थे, और इसके अलावा जो भी गतिविधियां होती थी सांस्कृतिक, उनमें हम हिस्सा लिया करते थे।
0: जी
1: तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं हारमोनियम बजा रहा था
0: हाँ
1: और गुरुजी किसी को परमिशन नहीं दिया करते थे कि बजा लें, तो मैं बजा रहा था तो गुरुजी आए तो उन्होंने मुझे कहा, किससे पूछकर आप हारमोनियम बजा रहे हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि इच्छा बहुत थी, हारमोनियम घर में था नहीं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे थोड़ा डांटा, तो उसके बाद मैंने पिताजी से कहा तो उन्होंने मुझे एक हारमोनियम ला के दिया मात्र 1500 रुपये में उस समय।
0: हाँ
1: ये बात होगी लगभग 2012 की।
0: जी,
1: फिर उसके बाद 2000 ऐसे करते करते 2015 में मैंने मंच पर पहली बार गाना गाया देशभक्ति,
0: जी
1: जो था अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे।
0: हाँ
1: तो उस गाने के बाद मैं उसमें द्वितीय पुरस्कृत भी रहा प्रतिस्पर्धा में,
0: हाँ
1: तो लोगों ने बहुत सराहना की और लोगों ने एक मुझे बहुत प्रोत्साहित किया।
0: हाँ
1: तो तभी से मेरा संगीत के प्रति जो एक लगाव था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब बारी आई चुनने की कि आप बायोलॉजी करके क्या चूज करेंगे, आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे या एक कलाकार बनना पसंद करेंगे जो पूरी उम्र संघर्ष करेगा और साधना करेगा,
0: जी
1: तो मेरा जवाब था कि मैं कला को चुनूंगा, इस संगीत के सफर को चुनूंगा
0: क्या बात
1: और उसी पर मैं कार्यरत हूं।
0: ये मेरा अगला प्रश्न भी था कि जैसे विज्ञान का विषय आपने बाद में चुना और विज्ञान के विषय से पढ़ाई करने के बाद संगीत को करियर के रूप में चुनना कितना चुनौतीपूर्ण उस समय ये रहा होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं तो उन श्रोताओं को बीच बीच में अगर आपकी आवाज सुनने को मिले, आपका गीत सुनने को मिले तो बहुत ही बेहतरीन, मैं समझता हूं कि ये जो बातचीत है हमारी ये हो पाएगी। तो आपने अभी जिक्र किया अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अगर दो पंक्तियां आप सुना सकें।
1: जी बिल्कुल।

0: क्या बात है। फिर इसके बाद आप राजस्थान विश्वविद्यालय भी गए, तो वहां संगीत की शिक्षा के दौरान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही?
1: जी, सबसे पहले मैं संघर्ष की बात करता हूं कि जब
0: जी
1: मैंने ये बात कही कि मैं कला को चुनूंगा,
0: हाँ
1: तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष जो आया वो था मेरा परिवार, जिनको मुझे ये बताना था कि संगीत जैसी विधा है, क्योंकि सब किसान है, घर में खेती का व्यवसाय है और सब ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ अच्छा करे, नौकरी हो, उसके पास पैसा कमाए। तो संगीत से किसी का जुड़ाव नहीं रहा, मैं ही अपने परिवार में पहला हूं जिसका संगीत से एक जुड़ाव है, और इसके अलावा जो संगीत में कुछ कर पाया थोड़ा सा।
0: जी
1: तो जब मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने मुझे कहा कि संगीत खाने को नहीं देगा आपको। मैंने कहा ठीक बात है, अब कुछ कह भी नहीं सकता था, उम्र में छोटा था
0: जी
1: तो सुननी पड़ती थी सभी की। तो उसके बाद मेरे पास एक सबसे बड़ी शक्ति जो थे वो थे मेरे गुरुजी। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं समझा दूंगा सभी को। किसी ने कहा कि डॉक्टर बन जा, किसी ने कहा कि जीएनएम कर ले, किसी ने कहा नर्सिंग कर ले, क्योंकि सब्जेक्ट बायोलॉजी था।
0: बिल्कुल
1: तो मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। तो
0: क्या
1: धीरे
0: बात
1: धीरे धीरे धीरे समय लगा, पिताजी मेरे सपोर्ट में आए, गुरुजी ने पिताजी को समझाया, पिताजी ने माता को समझाया, फिर दोनों ने मिलकर घर परिवार वालों को समझाया, तो एक सहमति हो गई। तो अब मेरे ऊपर सबसे बड़ा जिम्मा ये था कि मैंने संगीत चुन तो लिया है, राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ नहीं था, उससे पहले मुझे बूंदी जाना पड़ा था 1 महीने के लिए,
0: जी
1: क्योंकि परसेंटेज थोड़ी कम थी और मेरिट लिस्ट जो बनती उसमें मेरा नाम आया नहीं था। तो जब राजस्थान विश्वविद्यालय का कॉल मुझे आया कि आप आ जाइए, आपका एडमिशन उसमें लिस्ट में नाम आया है, तो मैं गया, मेरा एडमिशन हो गया। अब चुनौतीपूर्ण ये था कि मैं वहां जाकर जो लोग मुझे कह रहे थे कि संगीत खाने को नहीं देगा, मैं उन लोगों को ये बता पाऊं कि संगीत में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा और विषयों में है, और विधाओं में। तो हमने अपने आप को ऐसा स्वतंत्र रखा हर नए अनुभव के लिए। जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में गए
0: जी
1: तो हमने वहां पर नाटक भी किया, हमने वहां अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा, हमने वहां हिंदी साहित्य, हमने संगीत और सभी चीजें, हमने नाटक देखे, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। तो हमने एक चीज ये अनुभव की कि विद्यार्थी जीवन में अपने आप को स्वतंत्र रखिए हर नए अनुभव के लिए, क्योंकि जीवन में अनुभव ही आपको सिखाएगा। कोई किताब विद्यालयों की दीवारें आपको नहीं सिखा सकती,
0: जी
1: पुस्तकें आपको सिर्फ वहां तक पहुंचा सकती, लेकिन अनुभव आपको खुद करना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ी सीख हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय से रही कि अनुभव के लिए हमेशा स्वतंत्र रहें, नए अनुभवों को अपनाएं और उनसे सीखें।
0: और उसी नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए फिर आप राजस्थान से हैदराबाद गए। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपके अध्ययन के अनुभव के संदर्भ में तो मैं पूछूंगा ही, संगीत का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि जो स्टेट है वो भी चेंज हो गया, प्रादेशिक भाषाएं चेंज हो गई, संस्कृति
1: जी
0: चेंज हो गई, तो संगीत का जो दृष्टिकोण है, जब राज्य चेंज होता है, प्रदेश चेंज होता है, तो वो किस प्रकार बदलता है? और उसके साथ ही विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त करना कितना विशेष क्षण था?
1: अभी आप ये मुझे पूछ रहे हैं तो मैं उस समय में चला गया हूं जब ये सब घटित हुआ था,
0: जी
1: और बड़ा ही मतलब आनंदित विषय था। ये मेरा ही फैसला था, जैसे मैंने संगीत को चुना वैसे ही राजस्थान छोड़कर हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना ये मेरा ही फैसला था। घर वालों ने कहा कि यहीं रुक जा, आसपास कोई यूनिवर्सिटी देख ले, जैसे सब कहते हैं कोटा में देख ले, बूंदी में देख ले। मैंने कहा नहीं, मुझे घर से कुछ समय के लिए दूर जाना है। तो मैं लगभग हैदराबाद विश्वविद्यालय में 2 साल रहा और उसके अलावा 1 साल और मैंने वहां पर बिताया। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय में जब मैं पहली बार पहुंचा तो जो परिवर्तन था वो ये कि हैदराबाद विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत सुंदर है, राजस्थान विश्वविद्यालय से कहीं बड़ा है।
0: जी
1: आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 2500 एकड़ में उसका यूनिवर्सिटी का एरिया है,
0: जी जी
1: जहां पे हिरण है और सारी वनस्पतियां हैं और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो वहां पर ये अनुभव मैंने किया कि वहां उस 2500 एकड़ के विश्वविद्यालय में आपको एक पूरा भारत मिलेगा, जहां पे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, कलकत्ता से पढ़ने आते हैं, महाराष्ट्र से पढ़ने आते हैं, सभी जगह से पढ़ने आते हैं। तो वहां पर जो मेरा विकास हुआ वो ये कि मैं सभी की जो सांस्कृतिक विरासत थी उनको देख पाया, उनको जान पाया और उनसे मिल पाया। और वहां पे संगीत का ये था कि यहाँ भी शास्त्रीय संगीत सभी जगह सेम है, लेकिन वहां जो हमने अनुभव किया वो है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, जो कि हमारे उत्तर भारत में नहीं है। तो उस पद्धति से हमें कुछ सीखने को मिला कि उनकी गायन शैली कैसी होती है, वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, किस तरह से गाते हैं, वहां की भाषा तेलुगु जो बोली जाती है, वहां का खान पान कैसा है, ये सब चीजें हमने अच्छे से अनुभव की वहां से। और रही बात दीक्षांत समारोह की, तो सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्वर्ण पदक मिलेगा। एक नहीं

0: भी दो दो मिलेंगे
1: इसके साथ ही एक प्रश्न और जोड़ूंगा मैं
0: जी।
1: यहाँ पर कि जो 48वीं राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता थी, राष्ट्रीय स्तर की उस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर
0: जी,
1: उसके संदर्भ में भी बताइए।
0: उसके संदर्भ में भी यही कि मैं अपना जो था मास्टर्स पूरा कर चुका था और सीख रहा था, रियाज कर रहा था और गुरुओं के मार्गदर्शन में था। तभी हमें डिपार्टमेंट को एक नोटिस आया कि ऐसी ऐसी एक प्रतियोगिता है, तो इस उम्र के बच्चे जो है उसमें भाग ले सकते हैं। तो हमने आवेदन कर दिया और उसमें सभी तरफ से लोग आए थे पूरे भारत से, जिसमें हिस्सा हमने लिया। तो मैंने उस समय राग नंद थी जो मैंने अपने फाइनल ईयर के कॉन्सर्ट में गाई थी, वही राग मैंने वहां पेश की। तो सभी को बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए पहला अनुभव था कि मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हो गया। तो मुझे बड़ी बेहद मतलब खुश था मैं कि निकलने के बाद, मास्टर्स करने के बाद पहला ही अनुभव और उसमें हम द्वितीय स्थान पर, वो भी राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता में, तो बड़ा अच्छा अनुभव था।
1: वैसे रागों का अपना एक समय होता है
0: जी,
1: और वो तभी गानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्षमा मांगते हुए, चूंकि हम आपने जिक्र किया है, तो मैं चाहूंगा कि रागनंद जो आपने वहां पर सुनाया था, अगर वो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाए।
0: रागनंद जो है वो थोड़ा सा विलुप्त श्रेणी की रागों में आता है, क्योंकि आजकल के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें इस राग को बहुत कम गाया जाता है, बहुत कम आर्टिस्ट गाते हैं, वो प्रचलित राग जो होती है वो गाए जाते हैं। और थोड़ा सा ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज के जो शास्त्रीय कॉन्सर्ट्स होते हैं और पहले के जो शास्त्रीय कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, उनमें आज बहुत ज्यादा परिवर्तन है
1: जी।
0: आजकल रील का जमाना है, तो हर किसी को 30 सेकंड वाला, 30 मिनट वाला वो चीज चाहिए। तो आर्टिस्टों ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है और वो राग को पहले 3 घंटे गाया जाता था, लेकिन अभी वो राग को सिर्फ 30 मिनट 20 मिनट ऐसे गाकर फिर राग चेंज कर देते हैं। तो ऐसा भी कॉन्सर्ट पद्धति हो गई है
1: जी।
0: तो आपके सामने रागनंद पेश है, जिसमें बहुत अच्छा जो फिल्मी गाना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वो भी इसी में ही है।

0: क्या बात है,
1: ऐसा कुछ था।
0: बहुत बहुत खूब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वैसे भी जो समय है उसकी थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये जरूर जानना चाहूंगा, और मैं जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें ये भी बताता हुआ चलूं कि जब मैं मोहित राही की बात कर रहा हूं और जब आप शास्त्रीय संगीत और ये सारी चीजें सुन रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में जो एक मस्तिष्क में एक चित्र बना रहे हैं मोहित जी का, वो इस तरीके का बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी वेशभूषा धारण की हुई है, कुछ उन्होंने क्रॉक्स पहने हुए होंगे, कुछ उन्होंने हम कह सकते हैं कार्गो जींस पहनी हुई होगी, टी शर्ट्स होंगी, नहीं। राजस्थानी शान, यानी कि राजस्थान की जो शान है, वो पगड़ी उन्होंने अपने सर पर धारण की हुई है, और बिल्कुल देसी अंदाज, जो हमारा कुर्ता धोती वो होता है, उसमें मोहित जी हैं। तो आप परिकल्पना कर सकते हैं कि मोहित जी जो हैं वो किस प्रकार की शख्सियत हैं। और ये परिचय मैं दरअसल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब मैं बढ़ रहा हूं उनकी विधा की ओर, लोक संगीत की ओर। मोहित जी, लोक संस्कृति और लोक संगीत के संरक्षण की जो आवश्यकता है, आप जैसे काफी लोग हैं लेकिन बेहद कम हैं, तो इसकी आवश्यकता आप क्यों महसूस करते हैं? साथ में ही वर्तमान में उस्ताद मीर रजाक अली

0: आपकी गायकी से जो तारुफ
1: जी
0: रखते हैं, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
1: जी वर्तमान में अगर हम लोक संस्कृति की बात करें अभिषेक भैया, तो वो ये कि मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृति ही संस्कार है,
0: जी
1: कि अगर हम अपनी संस्कृति को जितना अपनाएंगे हम उतने ही संस्कारवान होते जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि परिवर्तन का दौर है, हम आधुनिक हैं, आधुनिक हो रहे हैं और आधुनिक हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उस आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी जड़ें हैं, हम कहाँ से हमने शुरुआत की अपने जीवन की, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये मेरी खोज थी। मैं भी जैसा आपने कहा कार्गो जींस, शूज, क्रॉक्स और टी शर्ट्स ये पहना करता था, तो मैंने ये पाया कि हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। जब पाश्चात्य के लोग हमारी संस्कृति को अपना सकते हैं, तो हमें किस बात की शर्म अपनी संस्कृति अपनाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हम जिस समय में हैं, अगर हमने संरक्षण नहीं किया तो हमने बहुत सारी चीजें खो दी है और हमें पता भी नहीं है कि हमने संस्कृति में क्या क्या खो दिया है।
0: जी
1: लेकिन अगर हम आज से ही उन्हें थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करेंगे, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इसे देख पाएंगी, इसे इसकी सराहना कर पाएंगी। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम संस्कृति को युवाओं तक पहुंचा पाए।
0: जी
1: और इसके बाद उस्ताद मीर रजा अली जी की मैं बात करना चाहता हूँ। उनकी गायकी जो है मिरासी समुदाय से है,
0: बिल्कुल
1: पूगल गांव में रहते हैं जो कि
0: बिल्कुल
1: बीकानेर में है, और मैं एक 4 महीने के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पर वहां गया था। उन्हीं की कम्युनिटी के साथ मैंने काम किया, 4 महीने वहां रहा मैं उनके साथ। तो मैंने पाया कि उनकी और उनके समुदाय की जो गायकी है वो बहुत अलग है।
0: क्या बात।
1: जैसा हम देखते हैं कि राजस्थान के जो और लोक गायक हैं, मांगणियार हुए, लंगा हुए, तो उनकी गायकी से इनकी गायकी बहुत अलग है।
0: सराय की भाषा के संदर्भ
1: जी
0: में ही बताइए थोड़ा सा,
1: सराय की भाषा,
0: क्योंकि
1: या
0: वहां का जिक्र आया है तो मैं वो ही
1: बिल्कुल
0: पूछना
1: बिल्कुल,
0: चाहूंगा।
1: तो वो ऐसा कि मीर रजाक अली जो है और उनका समुदाय जो है वो पंचपटिया गायक है।
0: अच्छा
1: पंचपटिया मतलब गायक जो 5 भाषाओं में गा सकते हैं।
0: अच्छा
1: तो उस भाषा में जो हम देखेंगे वो है हिंदी, उसके बाद पंजाबी, सिंधी, सरायकी, कवाली गजल जो होती है
0: जी
1: उर्दू में, ये वो गा सकते हैं 5 भाषाओं में। तो इसमें सराय की भाषा जो है वो पाकिस्तान में, सिंध रीजन में और राजस्थान का जो बीकानेर का एरिया है उसमें बोली जाती है।
0: जी
1: तो सराय की भाषा अभी उसको आपको बताने का ये मकसद है कि अभी बहुत विलुप्त होती जा रही है, उनके खुद के लोग उन्हें उसे बोलना पसंद नहीं करते।
0: जी जी
1: तो सराय की भाषा के जो सबसे बड़े शायर हुए वो हुए उस्ताद ख्वाजा गुलाम
0: जी
1: करीम,
0: जी जी
1: जिन्होंने सराय की में पूरी भाषा में उन्होंने अपनी काफियां लिखी। और उन काफियों में जैसे हर किसी ने परमात्मा को ढूंढने के लिए अपने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी परमात्मा को प्रकृति में देखा। तो जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं उन सब का उनकी काफियों में वर्णन मिलेगा। और इसके अलावा जो वहां के तालाब हैं, जो वहां के पेड़ों पर जो छोटे छोटे फल आते हैं उनका भी जिक्र है, वहां के छोटे छोटे कीड़े जो हैं उनका भी उसमें जिक्र है। तो सराय की भाषा में आप 4-5 भाषाओं का मिश्रण पाएंगे,
0: जी
1: जिसमें आप हिंदी पाएंगे, हिंदी के कुछ शब्द, अंग्रेजी के कुछ शब्द पाएंगे
0: जी
1: और उर्दू के शब्द पाएंगे, सिंधी के शब्द पाएंगे, तो उनसे ये मिलकर भाषा है। तो सराय की अगर मैंने वहां मीर रजाक जी से सीखी, सराय की भाषा के कुछ गीत सीखे, और मैंने ये पाया कि सराय की भाषा बहुत सुंदर है, अगर समझ में आए तो उसके जैसी कोई भाषा ही नहीं है।
0: अगर हम सुनना चाहें, मतलब कुछ पंक्तियां अगर आप उसकी हमारे साथ साझा करना चाहें
1: जी
0: तो।
1: मुझे बेहद खुशी होगी इस बात को लेकर। एक है कि दिलड़ी लुटी ते यार सजन, कदी मोड़ मुहारा ते आ वतन। तो जैसे हम राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कदी आओ नी रसीला मारे देश जोवा थारी पाट गणी, तो वैसे ये सराय की भाषा में दिलड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़, मतलब कभी मुड़कर वापिस आ वतन,
0: जी
1: उसको बुला रही है वापिस।
0: जी
1: तो बहुत सुंदर काफी है।

0: इसके अलावा छोटी छोटी कार्यशालाएं, जैसे वाद्य यंत्रों की कार्यशालाएं, जिसमें विलुप्त होते हुए वाद्य यंत्र हुए, जैसे बपंग हुआ, खड़ताल हुई, अलगोजा हुआ, रावण हत्ता हुआ, तो इनके हम छोटे छोटे बच्चों को प्रशिक्षण देते रहें, उन्हें इनकी बनावट के बारे में, कहाँ बजता है, उनके इतिहास के बारे में हम बताते रहें, तो ये एक सशक्त माध्यम है। और इसके अलावा जैसे हमारा जो आज का जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी नई शिक्षा प्रणाली में ये कहा गया है कि उस क्षेत्र की लोक संस्कृति को हिस्सा बनाया जाए। तो अगर ये पाठ्य पुस्तकों में भी अगर हम कहीं ना कहीं इसका एक पाठ रखें कि राजस्थान की लोक संस्कृति क्या है, वाद्य यंत्र क्या है, नृत्य क्या है, तो इससे युवाओं को एक बहुत अच्छा माध्यम मिलेगा अपनी लोक संस्कृति को जानने का और समझने का। आरोहण फाउंडेशन जो है ऐसे ही कार्य कर रही है, छोटी छोटी कार्यशालाओं के माध्यम से, छोटे छोटे नुक्कड़ों पर बैठकर बच्चों से डिस्कशन करती हैं और उनको वाद्य यंत्रों के बारे में बताती है, वो फील कर पाते हैं वाद्य यंत्रों को छू कर, कुछ गाने उन्हें सिखाती हैं। तो एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं उनको संस्कृति से जोड़ने की अपनी
1: जी जी
0: पुनः।
1: बहुत खूब अच्छा काम कर रहे हैं आप मोहित जी, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन बातचीत के अंत में, क्योंकि शुरुआत भी जो है वो हमने किसी न किसी गीत के माध्यम से की है, तो बातचीत के अंत में जो भी आप सुनाना चाहें, जो भी आपका पसंदीदा हो, और उससे पहले आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और उसके बाद एक कोई भी गीत जो आप सुनाना चाहें।
0: जी, युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो उस जमाने में,
1: जी
0: वैसे ही इस समय 21वीं सदी में 2026 में मैं ये कहूंगा कि संस्कृति की ओर लौटो, क्योंकि अगर आप बच पाएंगे तो संस्कृति ही आपको बचा पाएगी।
1: जी
0: आधुनिकता आपको एक समय के लिए होती है, बहुत क्षणभंगुर होती है, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो लंबा चलती है, वो हमारी अपनी संस्कृति है। और ये मैंने अनुभव किया कि अपने पारंपरिक पोशाक वो पहने, पारंपरिक खाएं, बुजुर्गों के साथ बैठें,
1: जी
0: उनसे उनके अनुभव जानें और अपनी कहानियां पढ़ें, तो एक बहुत अच्छा, कहते हैं कि हम एक सशक्त युवा तैयार कर पाएंगे देश के लिए जो संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा। और इसके बाद मैं आपको एक बिछुड़ो गाना सुना देता हूँ।
1: जी सुनाइए बिल्कुल।
0: अरे बिछुड़े रे खातिर पीवर चाली मारा बिछुड़ा, बिछुड़े रे खातिर पीवर चाली मारा बिछुड़ा, माया रोलो भी बिछुड़ो तन डारो लो भी बिछुड़ो, हर गई मर गई अर र र र र, हर गई मर गई अर र र र र, उतार साजन बिछुड़ो मैं धड़ी रे खेल बा गई सा, उतार साजन बिछुड़ो मैं धड़ी रे खेल बा गई सा, जोरा रे जुग जीव रे पापी खा गयो मारा बिछुड़ा, जोरा रे जुग जीव रे पापी खा गयो मारा बिछुड़ा, माया रोलो भी बिछुड़ो तन डारो लो भी बिछुड़ो, हर गई मर गई अर र र र र, उतार साजन बिछुड़ो मैं धड़ी रे खेल बा गई सा, उतार साजन बिछुड़ो मैं धड़ी रे।

0: ਸਰਮ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵੇ ਸਾ ਜੇਠ ਜੀ ਉਤਾਰੇ ਮਾਲੇ ਸਰਮ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵੇ ਸਾ ਮਾਇਆ ਰੋ ਲੋਭੀ ਬਿਛੂੜੋ ਤਨ ਡਾਰੋ ਲੋਭੀ ਬਿਛੂੜੋ ਹਰ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਅਰ ਰਰ ਰਰ ਰਰ ਉਤਾਰ ਸਾਜਨ ਵਿਛੁੜੋ ਮੈਂ ਧੜੀ ਰੱਖੇ ਲਬਾ ਗਈ ਸਾ ਉਤਾਰ ਸਾਜਨ ਵਿਛੁੜੋ ਮੈਂ ਧੜੀ ਰੱਖੇ ਲਬਾ ਗਈ ਸਾ ਉਤਾਰ ਸਾਜਨ ਵਿਛੁੜੋ ਮੈਂ ਧੜੀ ਰੱਖੇ ਲਬਾ ਗਈ ਸਾ
1: क्या बात है, क्या बात है। और जून का ये महीना है जब विश्व संगीत दिवस आता है, तो मैं समझता हूँ कि जब श्रोता इसे सुन रहे होंगे तो वो और भी इस हमारी बातचीत को सुन करके उससे रिलेट कर पाएंगे। तो मोहित जी, आपने समय निकाला और ये एक संगीतमयी बातचीत जो है उसका अनुभव कहीं ना कहीं हमारे श्रोता कर पाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत शुक्रिया। प्रसार भारती आकाशवाणी कोटा का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं युवाओं तक अपनी बात कह सकूं और अपनी लोक संस्कृति, राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी एक नई पहचान लोगों तक दे सकूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आकाश।

0: आकाशवाणी कोटा का कि मुझे ये मौका दिया, और इसके बाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कोटा आकाशवाणी से लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे भी निकलते रहें, और अलग अलग जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र के लोक कलाकार हैं उनके कुछ इंटरव्यूज होते रहें, तो ऐसी मैं कामना करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना युवा लोक गायक मोहित मेहता को, और इनसे बातचीत कर रहे थे अभिषेक तिवारी।

0: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां आज आपके साथ आपके दो रेडियो दोस्त हैं। मैं राहुल हूं
1: और मैं मुनमुन। श्रोताओं, आज मोहर्रम है। मोहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मोहर्रम का विशेष महत्व 10वीं तारीख यानी आशूरा के दिन से जुड़ा है। ये दिन हमें सच्चाई, न्याय, साहस और बलिदान का संदेश देता है।
0: जी हाँ दोस्तों, मुहर्रम के अवसर पर लोग हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान को याद करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले इराक के कर्बला में इमाम हुसैन ने अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने के बजाय सत्य का साथ चुना था।
1: जी हाँ दोस्तों, मुहर्रम केवल शोक का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मानवता का साथ देना चाहिए। इस अवसर पर कई जगहों पर ताजिए निकाले जाते हैं, धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती है और लोग इमाम हुसैन के जीवन से प्रेरणा लेते हैं।
0: और दोस्तों, आज के समय में मुहर्रम का संदेश और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरह से कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए और समाज में प्रेम, भाईचारा और आपसी सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए।
1: तो दोस्तों, आइए मोहर्रम के अवसर पर हम सत्य, साहस और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.3 एक मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तो दोस्तों, आपसे बातें करते करते हर बार की तरह आज भी पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। और दोस्तों, जैसा कि हमारी घड़ी की सुइयां भी अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लेने का अब समय आ गया है।
1: तो दोस्तों, दीजिए अनुमति आपके दोनों रेडियो दोस्त, मुझे यानी मुनमुन चौधरी को
0: और मुझे यानी कि राहुल शर्मा को।
1: फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआई विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा।

0: कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, कुमार सानू और सारिका कपूर की खूबसूरत आवाजों में, समीर के बोल और संगीत नदीम श्रवण का।

लीजिए श्रोताओं, अब कार्यक्रम चौपाल संबंधी एक सूचना सुनिए। आज शुक्रवार दिनांक 26 जून 2026 को साय 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और कार्यक्रम का विषय होगा जल संरक्षण और कम पानी में फसलें कैसे लगाएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राम स्वरूप नरोलिया, आचार्य कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मीदगंज कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0744-294-1142। प्रसारण का समय आज शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक। सूचना समाप्त होती है। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और चित्रा की आवाजों में जिद्दी फिल्म का ये गीत। बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है दिलीप सेन ने।

श्रोतो, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटाबूंदी का चंबल चैनल और फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है प्यार जिंदा है फिल्म से, और आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।

ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना क्या प्यार जिंदा है फिल्म से। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म क्या दिल ने कहा से ये गीत।

क्या दिल ने कहा फिल्म से ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी।

0: अरे ज्ञानचंद, तुम बोतल हाथ में लेकर कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी इस वक्त?
1: अब क्या बताऊँ हरी भाई, 3 दिन से पेट में गड़बड़ हो रहा है, एकदम से प्रेशर बनता है। इस वक्त भी प्रेशर बहुत जोर से बना हुआ है, इसीलिए भागकर जंगल जा रहा हूँ।
0: तो क्या तुमने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया?
1: कैसी बात करते हो हरी भाई, घर में और शौचालय? शिव शिव शिव शिव शिव, घर में शौचालय बना लिया तो घर की रिद्धि सिद्धि चली नहीं जाएगी।
0: ये भी कोई बात हुई ज्ञानचंद? अरे अपने सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं 4-4 शौचालय बने हुए हैं, और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ?
1: लेकिन हरी भाई।
0: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन वेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो। और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
1: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है, मैं आज ही सरपंच जी के पास जाता हूँ और इसकी सारी जानकारी लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैं चलता हूँ।
0: अरे
1: तो
0: लेकिन
1: पेट में जोरों से गुड़गुड़ हो रही है।
0: अरे शौचालय जरूर बनवा लेना।
1: हाँ हाँ जरूर बनवा लूंगा।

0: പറഞ്ഞു.
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए. समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश. इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स. और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं. डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश.
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार. मुख्य समाचार. अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में. राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी. गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया. हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज. मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना. समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से. अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे. वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे. प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैम्प पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे. समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे. कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया. युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है. इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं. नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है. श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है. उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं.
3: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस. इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें. दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल. उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है.
2: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए. डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई. नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर

0: नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिये निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमद हारिज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ

आरंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर

0: 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एयरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉ. मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहलियां आज री खास खबरां अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है और प्रदेश माए लाडला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी मॉनसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे काले कार्यक्रम राख्या जावेला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब माए होवण वाला इन जलसा माए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग री योजना वाला लाभार्थियां ने कर्ज अनुदान और सब्सिडी रा डमी चेक दिया जावेला वे रिकोरी योजना वाला लाभार्थियां ने भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेला प्रदेश माए पहली दफा राख्या जा रिया इन कार्यक्रम रे चालता राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च करेला जलसा माए रिकोरी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी रा आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी दिया जावेला कार्यक्रम माए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के विश्नोई समेत वरिष्ठ अहलकार मौजूद रहेला आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है युवावां और नूवी पीढ़ी

0: ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਅਰ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਹਿ ਬਦਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਅਰ ਵਾਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੇ ਖਾਤਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਓ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਇਨ ਮੌਕੇ ਮਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਨਿਆਰੀ ਨਿਆਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਖੀ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਏ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਵੈਰ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨੇ ਰੋ ਹੇਲੋ ਕਰਿਓ। ਵਣਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੋ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਰੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਖਾਤਿਰ ਮੋਟੋ ਖਤਰੋ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਅਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੂ ਇਨ ਅਭਿਆਨ ਮਾਏ ਮਿਲਰ ਭਾਗ ਲੇਵਾਰੀ ਅਰਜ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਨ ਮੌਕੇ ਮਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਰੇ ਚਾਲਤਾ 1,18,00,000 ਕਿਲੋ ਸੂ 32 ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਜਪਤ ਕਰਿਓ ਗਯੋ ਹੈ। ਵਣਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਂਕੜੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੀ ਤਸਕਰੀ ਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਰੀ ਲਗੋਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦਰਸਾਵੇ ਹੈ।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस माथे प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे कार्यक्रम राख्या गया। डीग माए जिला कलेक्टर राजकुमार कसवारी अध्यक्षता माए कार्यक्रम राख्यो जो इन माए लोगा ने नशा मुक्त भारत अभियान री जानकारी दी। नागौर माए साइकिल रैली निकालर नशो नी करने रो संदेश दियो। जैसलमेर माए भी माए भारत रा स्वयं सेवका नशा रे दुष्प्रभावां रा बारा माए जानकारी दी। पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानी सू कार्यक्रम राख्या गया। इन रे चालता समाज ने नशे रे नुकसान सू जागरूक करियो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करियो है। इन रे तहत आयात करी जावण वाली दवावां री बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सू कम 12 महीना होनो जरूरी वेला। हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रहवेला। इन खातिर आयात्री बकत कम सू कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला। मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सू दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला। मंत्रालय स्पष्ट करियो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बकत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सू जुड़ियोड़ो है। जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सू आवती 4 जुलाई सू उड़ाना संचालित वेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सू हवाई सेवावां शुरू होने सू पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिलेली।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे शहीदा री याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकाला जा रिया है। इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सू सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है। इन सू पहलां प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी। जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और 4 दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी। अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीस सु।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले

0: के में सहराब किया जाएगा। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखीजा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माते वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गाया ने चारो खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए भेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथे ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही।

0: रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करो गयो है। इनरे साथ ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगारो नाम लिखो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवा वारे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजना वारी शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू करो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुआ और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रिया ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत AC वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरब है मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगह माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगह माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इनरे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वां एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप माथे करियो जावेला। साथ ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 102 FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.3 एक मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सायंकाल के 7 बजे हैं। अब समय है किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम चौपाल का।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनभाला सभी करसान भाई बढ़ना का ताई आपका साथी जुगल भाई को गणो गणो और राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। RKVY कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।
0: करसान भाई बनो चौपाल कार्यक्रम में आप सबको स्वागत छो। आज आपने चौपाल का जो पावना छो पधार चुके छे। आज आपने चौपाल का पावना छे डॉक्टर रामस्वरूप नरोलिया और आप छे आचार्य कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा में। डॉक्टर साहब माँ की चौपाल में आपको गुणो गुणो स्वागत। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: और करसान भाई बनाओ आज को जो विषय छे बहुत बढ़िया विषय छे। विषय छे क जल संरक्षण और कम पानी में फसला कस्या लिया। ये टाइम की आगे पानी भी खूब बरसेगो। कम पानी की आवश्यकता पड़ जाओ तो कम पानी की कसी फसला अपन ले। यही सब बातें ले रही यदि आपका मन में प्रश्न छे आप यदि उनको समाधान चाहो चो तो आप सीधा माँ का जो फोन नंबर छे 2941142 कोटा शहर से बाहर का जो करसान भाई बन जे वो 0744 कोड लगा सीधा डॉक्टर रामस्वरूप जी नरोलिया से बात कर सके और अपना प्रश्न को समाधान पा सके। डॉक्टर साहब सबसे पहली बात यह है कि ये टाइम की सब करसान भाई बहन इंदर राजा की आड़ी देख रहा है कि यो बरस जाओ तो आपनी खरीफ की फसल आपनी जो जम जाओ पर कहीं बरस रहे हो कहीं न बरस रहे हो ऐसी स्थिति चल रही है। तो जल संरक्षण आगे भी इनको संरक्षण करेगा जब भी जा रहा अपनी फसल आग अपनी प्राप्त होगी तो अबाणसुई जो अपना करसान भाई बहन है वो जल संरक्षण के लेकर का उपाय कर।
2: जी हाँ सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि जल ही जीवन का आधार है
0: जी
2: और कृषि का प्रमुख संसाधन भी है
0: जी।
2: तो बदलती जलवायु घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा के कारण जल संरक्षण आज अत्यंत आवश्यक हो गया है
0: जी।
2: तो आइए इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है
0: जी
2: जहाँ पर लगभग 80% उपलब्ध मीठे जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। लेकिन वर्तमान समय में जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव अनियमित मानसून और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण
0: जी
2: जल संकट गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। ऐसे में कृषि में जल संरक्षण अपनाना केवल आवश्यक है बल्कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है
0: जी।
2: यदि हम खेतों में उपलब्ध जल का सही प्रबंधन करें तो कम पानी में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है
0: जी जी जी।
2: तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए या मौसम को देखते हुए
0: जी
2: हमें सबसे पहले तो फसल का चयन करना पड़ेगा।
0: भाई पानी कम बरस

0: जो धागा कसी पचल लेनी
1: या
0: बहुत बढ़िया।
1: तो पानी की उपलब्धता को देखते हुए जिन किसान साथियों के अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था है
0: हाँ,
1: तो उस हिसाब से वो फसल का चयन करें
0: जी,
1: और जो केवल वर्षा आधारित ही किसान है
0: जी जी,
1: तो उनको उसी हिसाब से फसल का चयन करना चाहिए कि मैं मेरे पास पानी की उपलब्धता है या नहीं। तो मेरे मान से इस मेरे मानने मेरा मानना ये है कि इस बदलते परिवेश के अंदर ये एल नीनो के इफेक्ट को देखते हुए
0: जी जी,
1: इस वर्ष बारिश का स्तर यानी कि बारिश कम होगी।
0: हाँ,
1: ये आकाशवाणी जयपुर से भी यानी प्रसारित हो चुका है ये दिशा निर्देश
0: मौसम विभाग की भी ऐसी भविष्यवाणी।
1: हाँ
0: जी जी,
1: तो इसको देखते हुए हमें कम पानी चाहने वाली फसल का चयन करना चाहिए।
0: सही बात।
1: तो कम पानी चाहने वाली फसलों के अंदर सोयाबीन भी एक फसल है
0: जी,
1: उड़द है
0: हाँ हाँ,
1: तो ये फसलें मक्का है
0: हाँ,
1: तो इन पे हम जा सकते हैं
0: जी जी जी।
1: और जिन किसान साथियों के पानी की उपलब्धता है या ट्यूबवेल की है और वो अडिक है कि नहीं मैं तो धान ही लेऊं
0: हाँ,
1: तो धान वाले किसान साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि जो हमारी परिपाटी चल रही है कि धान को गरड़ करके उसके अंदर भी 6-60 सेंटीमीटर खड़ा पानी रखे
0: जी, जी, जी, जी।
1: और उसके के अंदर पानी का बहुत ज्यादा अपव्यय होता है, तो ऐसा नहीं है कि धान को खड़ा पानी रखने से ही उगाया जा सकता है या उसकी उपज ली जा सकती है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: बिना मतलब पानी,
0: कम पानी में भी ले,
1: कम पानी के अंदर भी धान की खेती की जा सकती है।
0: अरे वाह।
1: तो इसमें सबसे पहले तो उपलब्धता के आधार पर हम बात करेंगे कि इस धान के अंदर जो अपनी पारंपरिक विधि से जो धान करते हैं उसकी बजाय एक सघनीय चावल फसल प्रणाली है
0: हाँ,
1: तो उस विधि से क्या है कि पानी की बचत भी होती है
0: हाँ,
1: और उत्पादन भी अधिक होता है
0: जी।
1: तो ये फसल प्रणाली क्या है तो इसके बारे में बताना चाहूंगा
0: जी, जी जी जी।
1: तो इसमें क्या है कि 12 से 15 दिन तक नर्सरी के अंदर 25 दिन रखने की जरूरत नहीं है। नर्सरी इसके अंदर 12 से 15 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है
0: धान की जी।
1: तो जिन जो किसान साथी अब भी अगर मान लो धान करने की इच्छुक है तो इस विधि से जो सघनी चावल प्रणाली है उससे है ना धान की खेती कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बीज को पहले 12 घंटे भिगोकर और फिर उसके बाद 36 घंटे उसको बोरी के टाट में और पानी छिड़कते रहे और तो अंकुरित वहीं पे हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: उठान वहीं पे ले लेगा।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उस धान को यानी उस बीज को जमीन से उभरी हुई क्यारी
0: हाँ,
1: उभरी हुई क्यारी पे और उसको छिड़क दे और पानी लगाते रहे। तो इस रीति से और इसके अंदर जो गोबरी खाद या केचुआ खाद और मिट्टी का जो अनुपात है
0: हाँ,
1: वो बराबर रखते हैं यानी कि जितना मिट्टी है उतना ही आपका गोबरी खाद या फिर केचुआ खाद
0: जी जी।
1: तो ये मिलाकर अगर सब उभरी हुई क्यारी पे अगर करते हैं तो क्या है कि 12 से 15 दिन के अंदर नर्सरी तैयार हो जाती है
0: हाँ।
1: अब 12 से 15 दिन की नर्सरी को जो गर्ड है गर्ड पहले से जो तैयार गर्ड है उसके अंदर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखकर और उसके अंदर
0: रुपाई कर
1: सकते हैं। इसके अंदर पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखना है कि फसल के अंदर यानी जमीन के अंदर दरार नहीं पड़े।
0: अच्छा।
1: और पानी खड़ा नहीं रहे
0: हाँ, समय समय पर पानी देता रहे बस।
1: हाँ बस इसमें पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं है कि
0: अच्छा,
1: भाई 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर
0: हाँ,
1: पानी
0: हाँ,
1: खड़ा रखो तो वो जरूरत नहीं। लेकिन इस रीति से अगर हम पानी कम रखते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कम पानी रखने पे क्या है कि कचरा ज्यादा आता है।
0: अच्छा।
1: तो कचरे के लिए एक कोनोविडर नाम का यंत्र आता है
0: हाँ,
1: जो हस्तचलित भी है और मोटर से चलने वाला भी है।
0: अरे वाह।
1: तो उसमें क्या है कि लाइनों के अंदर कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर करते हैं
0: जी।
1: तो इस 25 की कम कम का आता है कॉर्न वीडर,

0: तो उस कतार के अंदर आसानी से चल जाता है। तो उससे क्या है कि मतलब पौध लगाने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसके अंदर प्रत्येक 10-15 दिन बाद में दो तीन बार है ना जो कोनोविटर चला दो।
1: हाँ।
0: तो उससे क्या है कि वो कचरा वहीं का वहीं सड़कर और खाद का भी काम करेगा, और जो ही कोनोविटर चलाए तो क्या है कि हवा का आदान प्रदान ज्यादा होगा, उससे क्या है कि जड़ें मजबूत होगी और आगे तक बढ़ेगी और पोषक तत्वों का अधिक ग्रहण करेगी।
1: जी जी बहुत बढ़िया।
0: इसके बाद
1: हाँ
0: ये लगाने के बाद में फिर क्या है कि हमें जब तक उसके अंदर बालियां नहीं बन जाए जब तक हमें पानी इतना ही लगाना है, दो मतलब एक तो दो सेंटीमीटर दो तीन दो दो सेंटीमीटर ज्यादा
1: हाँ।
0: खड़ा नहीं रखना उसमें,
1: भर के नहीं रखना
0: हाँ, और उसके अंदर दरार नहीं पड़े, उससे दरार पड़ने से पहले उसके अंदर पानी लगा दो।
1: जी जी
0: ये बालियां बनने तक ऐसी। फिर उसके बाद जब बालियां बन जाए तो उसके बाद हम उसके अंदर तो थोड़ा सी पानी खड़ा रखते थे। तो इस रीति से हम अगर धान लगाते हैं तो पानी की बचत होगी और हमारा उत्पादन भी ज्यादा होगा।
1: और आपने तो एक बात की जगह 15-20 दिन तो अगेती उसे ही होगी।
0: हाँ
1: वो आपने की ना वही कर
0: नर्सरी के अंदर जो 25 दिन खर्च हो जाता है उसके अंदर
1: तैयार होगी।
0: हाँ पहले तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर फिर भी अगर मान लीजिए और भी ज्यादा पानी की कमी है और किसान अड़ी है कि नहीं मैं तो धान ही करूंगा, तो धान को गरड़ की बजाय अगर सीधी बुआई द्वारा भी धान की खेती कर सकते हैं।
1: अच्छा जैसे गेहूं और ऐसे
0: गेहूं और वैसे उस तरीके से अगर ओढ़ते हैं तो क्या कि आसानी से धान की खेती हो सकती है।
1: तो ये में उत्पादन को चक्कर पड़ता होगा कहेंगे?
0: उत्पादन का अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
1: हाँ।
0: उतना ही उत्पादन लिया जा सकता है। एक तो ध्यान रखने की है कि बीज को ओढ़ने के बाद यानी कि आगे आगे आपकी सीड ड्रिल और पीछे पीछे उस दौरान क्या है कि नमी रहती खेत के अंदर पेंडीमेथालिन नाम की दवा आती है।
1: हाँ।
0: जो कि 80 ml के आसपास एक टंकी के अंदर 15 लीटर की टंकी के अंदर डालते हैं
1: जी।
0: तो उससे क्या है कि कचरा कम आएगा।
1: हाँ।
0: फिर उसके बाद में
1: एक,
0: जब 15
1: साथी जवान से राम राम कर लिया।
0: हाँ
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ राम राम जी।
2: राम राम जी। राम राम।
1: शुभ नाम बताओ आपको। अच्छा प्रश्न पूछो आपका है, प्रश्न पूछ बचाओ।
2: नहीं
1: हाँ मक्या कर बचाओ तो
2: किसी और मक्या सही रहेगी।
1: अच्छा हाँ डॉक्टर साहब
0: देखो अगर मक्का आप करना चाहते हो तो मक्का क्या है कि दो दो तरीके से मतलब दो तरीके की होती है। एक तो आप तो मीठी मक्का या अगर अगर भुट्टे को बेचना चाहते हो तो ये अलग आती है, और बाकी वैसे अगर उत्पादन लेना चाहते हो मक्का का तो उसके अंदर कोई भी बहुत सारी जो वेराइटियाँ हैं इसकी यहाँ पर उदयपुर की भी निकली हुई है और बहुत सारी मक्का की वैरायटी, तो कोई भी वैरायटी का आप चयन करके मक्का की खेती कर सकते हो। बस इसमें शर्त यह है कि पानी ये क्या है कि पानी से बहुत ही सेंसिटिव फसल है, इसके अंदर पानी भी खड़ा नहीं रहे तो कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों से सेंसिटिव है।
2: अच्छा कौन सी बड़ी अच्छी किस्म रहेगी सर जैसे उत्पादन के लिए करेंगे?
0: देखो आप कोई भी देखो किस्म का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस्म, ऐसा कहीं नहीं होता कि ये किस्म ज्यादा उत्पादन देती है और ये किस्म ज्यादा उत्पादन,
1: प्रबंधन सब कुछ
0: है। ये प्रबंधन आप किस पे कैसा कर रहे हो उस पे निर्भर करता है। आपको कोई भी दुकान पे कोई भी किस्म, अब आप अगर किस्म की बात करोगे मैं आपको उदयपुर बता दूंगा, उदयपुर से कहाँ से लेके आओगे, इतना अपने पास जो उपलब्ध है दुकानों पे बहुत सारी वैरायटियां हैं बहुत सारी किस्में हैं, तो उनको आप किसी को भी ले सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो आप करिया चेक जो अपन डायरेक्ट बोवा
0: हाँ।
1: और एक जो गरड़ कर लगावा तो उमें पानी ज्यादा चाहो चे, जो डायरेक्ट बोआ चे अपन उमें पानी कम चाहो चे, पर उमें कचरो ज्यादा हो जाओ चे, तो आप उनकी बुआई के साथ साथ कोई दवा चढ़क बाकी।
0: हाँ बात ये पेंडीमेथालिन नाम की दवा हाँ। ये वो क्या है कि आपको अंकुरण से पहले भी उगने से पहले है ना वो छिड़की जाती है
1: जी जी।
0: और फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद में एक नोमिनी गोल्ड के नाम से दवा आती है, ओ तो उसको अगर 8 ml मिली लीटर प्रति लीटर के

0: हिसाब से अगर करते हैं उसके अंदर, तो जो बचा हुआ कचरा, पहले बात तो कि पेंडीमेथालिन की दवा से है उससे काफी कम आ जाएगा,
1: खत्म हो जाएगा।
0: हाँ, और फिर दूसरा स्प्रे करते हैं नेमोनिक गोल्ड का, तो उससे क्या है कि कचरा कम हो जाए। और पानी उसी तरीके से लगाना है, ज्यादा तो क्या है कि बारिश के मौसम में बारिश होती है।
1: हाँ।
0: बाकी फिर भी क्या है कि आपका जितना वाष्पीकृत पानी होता है उतना आप पानी लगा देते हो, यानी कि तीन चार पानी अगर लगा दोगे तो क्या है कि धान का वांछित उत्पादन ले सकते हैं।
1: और मोटी खर्चो भी तो सारो ही बचो ना, ट्रैक्टर कौन, गरड़ कौन, सारी छेदनता है, मुसीबत वक्त वो पीसो भी तो बेकार जाओ छे ना
0: जी।
1: और सीधी और उत्पादन उतना ही बराबर,
0: उत्पादन उतना ही उतना ही आएगा। बहुत सारे अपने कोटा के किसान भी कर रहे हैं, बूंदी के किसान कर रहे हैं, क्योंकि इसका अपना जितना एरिया है उसका कम से कम 25% भाग के अंदर ये पानी की कमी को देखते हुए
1: और
0: किसान साथी और के धान की खेती कर रहे हैं।
1: हाँ, और अब तो डॉक्टर साहब ये देखी छे कि जहाँ कम पानी छे ना लोग अब तो वहाँ भी धान बाबा ला गया, पर यदि यही तरह से आप ये फसल भाई तो आगे जार तो मुसीबत आनी आनी छे ना।
0: बिल्कुल
1: है ना, तो धान के साथ साथ और किसी फसला ये कम पानी की ले सके छे, ताकि आबाड़ा समय पर जैसे सोयाबीन मचे या उड़द मचे या मूंग मचे या ताकि।
0: हाँ देखो, इसके अंदर सोयाबीन के अलावा आप उड़द भी ले सकते हो।
1: हाँ।
0: अभी जैसे किसान साथी का फोन आया कि मक्का भी ले सकते हो।
1: हाँ हाँ।
0: तो ये फसलें हैं नहीं जो कम पानी चाहने वाली है।
1: हाँ।
0: तो इन फसलों को हम ले सकते हैं।
1: जी जी, एक किसान साथी जवां से राम राम। हाँ। हेलो
2: हेलो, राम राम साहब।
1: राम राम साहब, शुभ नाम बताओ।
2: बेरलाल बोल रहा हूँ।
1: हाँ, स्वागत है बेरलाल जी, पूछो काय प्रश्न पूछ विचारे। हाँ गरडा को बीज तैयार हो रहे चुवा को, तो केदन बाद लगावा।
0: हाँ। देखो, गरडा को अगर बीज तैयार हो गया, कब लगाया था उसको, कब बुआई करी थी नर्सरी के अंदर?
2: 1 तारीख को।
0: 1 तारीख मतलब 1 जून को।
2: हाँ।
1: तो आज 26 होगी।
0: आज 26 होगी। आप ऐसे तो हो गया, टाइम तो हो गया पूरा, 25 दिन से ज्यादा नहीं रखते आप, जितना ज्यादा रखोगे उतनी पैदावार कम आएगी। बिल्कुल लगाओ, अगर पानी है आपके तो आप गड़ तैयार करके उसको लगा दो, आप जितना जल्दी लगाओगे उतना ही आपको उत्पादन अधिक होगा। बाकी नर्सरी के अंदर जितना पौधा ज्यादा रहेगा उतनी पैदावार कम होगी।
1: हाँ, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। हाँ, तो आप करे थे डॉक्टर साहब के उड़द भी बात सके चाह अपना करसान भाई, और मक्का च और सोयाबीन च अपन देखा चाह के पहली सो आपने जो हाड़ोती में सोयाबीन ही रबी खरीफ फसल में बढ़िया हो ची, पर अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही।
0: अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि सोयाबीन इस हाड़ोती क्षेत्र के अंदर है ना, उसका उत्पादन बहुत कम होता जा रहा है।
1: हाँ।
0: लगातार 3-4 सालों से
1: 50 किलो बीघा की भी नकड़न नहीं बार।
0: हाँ, तो इसमें क्या है कि एक तो जो ज्यादा वर्षा है ना उससे क्या है कि फसल
1: एक और किसान साथ। हाँ। हेलो
2: हेलो,
1: राम राम साहब, शुभ नाम बताओ आपको।
2: जलाल बोरी साहब,
1: कहाँ से बोल रहे हैं? जो
2: खलुंदा से।
1: स्वागत है आपको, पूछो काय प्रश्न पूछ बेचारे। जो
2: दान
1: और दी।
2: हाँ
1: हाँ,
2: 10-12 दिन को।
1: अच्छा, 10-12 दिन हो गया हो रहा।
2: हाँ।
1: तो काय कब उचारे जो आप काय चाहो जो
2: पानी पर जाकर।
1: हाँ
0: देखो, 10-12 दिन आपको हो गया, उसमें पेंडीमेथालिन दवा छिड़की कि नहीं छिड़की ये बताओ आप।
2: तो
0: धान ओढ़ने के बाद में जो कचरा वाली दवाई है नहीं, उसको धान उगने से पहले जो छिड़कते हैं वो छिड़की की नहीं छिड़की?
2: अच्छा, पहले छिड़क दे बाद।
0: अरे अब नहीं, वो छिड़की की नहीं छिड़की दवा कोई ये बताओ। काई भी नहीं छिड़की ने। तो आप अंकुरित हो गया बीज बाहर निकल आया।
2: हाँ, निकले आया।
0: हाँ, तो उसके अंदर पानी लगा सकते हो आप।
2: अच्छा, लगा सकते
0: हैं। हाँ, पानी लगा सकते हो आप।
1: ठीक ठीक, धन्यवाद साहब। हाँ, आप करे चक सोयाबीन का कई कारण थे जो उत्पादन कम हो रहे थे।
0: हाँ, तो उत्पादन कम होने के बहुत सारे कारण है, उसके अंदर जलवायु भी एक
1: प्रमुख कारण
0: प्रमुख कारण है कि मौसम अगर हमारा

0: रहता है, बारिश ज़्यादा आती है तो भी नहीं होती, बारिश कम आती है तो भी कम होती है, और बहुत सारे जो प्रबंधन है उसमें भी हमारी कमी देखी जा रही है।
1: जी
0: तो प्रबंधन जहाँ तक है, किसान साथी एक तो कचरे की वो दरकिनार कर देता था कि कचरा वो दिया, और उसके बाद ये जो पेंडीमेथलिन दवा है उसको छिड़कते नहीं है, फिर एकदम से अगर वो दिया बारिश आ गई, बारिश आने के बाद समय कम मिला, मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिला
1: जी
0: कचरा
1: जी
0: निकालना, या
1: जी
0: फिर लेबर ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से अगर कचरा का इतना प्रकोप हो गया तो फिर क्या है कि आपको उत्पादन मिल ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण है
1: जी जी
0: इसके अंदर। बाकी क्या है कि ये शुरू से लेकर बुआई से लेकर आपकी कटाई तक ये एक तरीके से खून सुकाऊ फसल ही है।
1: हाँ सही,
0: इसका अगर सही तरीके से समय पे सही तरीके से प्रबंधन नहीं करेंगे
1: तो
0: तो
1: नुकसान ही
0: क्या है कि
1: नुकसान हो जाए।
0: नुकसान ही नुकसान।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसके
1: जी
0: बजाय हम अगर इस क्षेत्र के अंदर दूसरी फसल का चयन करें, जिस उड़द है,
1: हाँ,
0: मक्का, बूंदी के अंदर
1: मक्का
0: बहुत
1: में
0: सारी
1: बहुत बढ़िया पहली सुम रकबोग भी बड़ी होचे मक्का को।
0: हाँ, तो वो करें।
1: हाँ
0: और कई बार क्या है कि सोयाबीन की फसल के अंदर भी क्या है कि लंबा स्पेल आ जाता है, यानी कि 20 दिन का अगर गैप आ गया तो भी क्या है कि ये फसल है ना जो
1: सूखो पड़ी हो तो।
0: सूख जाती है, और फिर क्या है कि वांछित तो उत्पादन नहीं ले
1: जी
0: पाते।
1: जी जी
0: तो हम क्या है कि जो उपलब्ध हमारे पास
1: संसाधन
0: नमी है, उपलब्ध पानी है, उसके अनुसार फसल का चयन करें, नमी संरक्षण करें। जो मान लीजिए ड्राई स्पेल आ गया, सूखा पड़ गया, तो उस दौरान क्या है कि हम क्या ऐसे क्या प्रबंधन करें कि हमारी नमी बरकरार रहे।
1: जी
0: तो ऐसी जैसे मौसम को देखते हुए या इस कम कम पानी की जो चेतावनी दे रखी है उसको देखते हुए अगर 15 से 20 दिन का अगर गैप आ जाता है, तो उस दौरान फसल के अंदर सबसे पहले तो क्या है कि निराई गुड़ाई करें।
1: जी
0: निराई गुड़ाई करेंगे तो क्या है कि जो
1: नमी बनी
0: पानी
1: रहेगी।
0: नमी बनी रहेगी, जो पानी
1: हाँ
0: वाष्पीकृत होकर वो उड़ जाता है
1: वो रुक जाए वो।
0: एक नलियों के माध्यम से, तो वो नलियों पे और ढक जाता है,
1: जी
0: ढक्कन लग
1: जी
0: जाता है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वाष्पीकृत तो जो पानी उड़ रहा है वो नहीं उड़ेगा, तो उसको करेंगे। बाकी इसके बाद मल्चिंग है।
1: एक करसान साथीदार
0: हाँ
1: साहब, राम राम साहब,
2: राम राम साहब
1: शुभ नाम बताओ आपको।
2: जी, मैं अर्जुन जाट बोल रहे हूँ, बोली तो।
1: अर्जुन जी कैसे, बूंदी सु प्रॉपर।
2: हाँ जी,
1: हाँ
2: जाटो ग्राम नगर गांव का।
1: अच्छा जाटो
0: हाँ
1: का राम, पूछो काय प्रश्न पूछ बेचारे जो।
2: मुझे पूछ बता दो, एक पौधो लगा मुझे आपने जामुन को,
1: हाँ
2: जो आपने गोडा सोन हो गया,
1: हाँ
2: तो उसमें कहीं कहीं सावधानी बरतान जीव का बड़ोर और बड़ा कहीं कहीं टाइम के लिए।
0: देखो जामुन का पेड़ लगा रखा है ना आपने, तो उसको अभी हाल फिलहाल है ना उसके चारों तरफ है ना पेड़ के 1 फीट छोड़ दो आप। कितना बड़ा, कितना, 1 मीटर का हो गया, 2 मीटर का हो गया,
2: हाँ हमारे घुटने तक हो गया,
0: आपके घुटने तक हो गया, तो उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं। उसके पास पास है ना उसको बढ़िया गुड़ाई करके और थावड़ा बना के उसके अंदर आप थोड़ा लगातार पानी मत दीजिए उसके अंदर, 8-10 दिन से बाद में उसके अंदर पानी दीजिए, और 1-2 किलो अगर आपको केचुआ खाद मिल जाए तो वो उसके अंदर डाल कर गुड़ाई करके 5-10 दिन खुला छोड़ के फिर आप पानी लगा दो, ये कर सकते हो आप,
1: बहुत
0: उससे बढ़वा रहा।
1: धन्यवाद। हाँ अब डॉक्टर साहब बात आओ चेक, ये तो हुई बात पसला आड़ी आपने, अब आड़े समय जो चो बरसात को चे और खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में, किसान साथी ज्यादा से ज्यादा यदि पानी के ताई रोकेगा पानी बचाओगा, इन के लेकर काय उपाय कर सके जो किसान में।
0: इसके लिए उपाय है कि आप खेत के अंदर मेड़बंदी करें।
1: जी
0: उससे क्या होगा कि खेत का पानी खेत के अंदर ही रहेगा। तो वैसे भी कहावत है कि खेत का पानी खेत के अंदर, खेत का कचरा खेत के अंदर,
1: हाँ
0: अगर रहेंगे तो क्या है कि आपको बाहर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके अंदर
1: हाँ
0: नमी भी संरक्षित रहेगी
1: और
0: और खेत का जो अवशेष है उसके अंदर ही रहेगा,
1: वो
0: तो
1: खाद
0: क्या है
1: को
0: कि
1: काम
0: वो
1: करे।
0: खाद का काम करेगा,
1: अरे वाह
0: पोषक
1: सर,
0: तत्वों का काम करेगा, और उसके साथ साथ उससे क्या है कि आपकी जल उपयोग दक्षता भी बढ़ेगी।
1: एक कर साथ ही।
0: हाँ
1: हेलो हेलो,

0: राम राम जी। हेलो, आवाज ना आ रही आपकी।
1: हाँ
0: हाँ,
1: बोलो।
0: कहाँ से बोल रहे जो
2: हाँ
0: हैं?
2: उड़द
0: हाँ, उड़द बड़ा।
2: बोला
0: आवाज साफ ना आ रही आपकी।
1: हेलो।
0: हाँ, वो कह रहे थे भाई, उड़द उड़द का की बात कर रहे होगे। उड़द कब ताई बात सका चापन?
1: भाई उड़द अभी आप थोड़ी जल्दी है। उड़द अभी क्या है कि आप थोड़ा रुक के अगर बोओगे 15 जुलाई के आसपास, 10 से 15-20 जुलाई के आसपास तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि पहले अगर आप उड़द लगा दोगे और बाद में बारिश होगी तो वो गड़ जाएगा। तो हमारा मानना है कि अगर 15 जुलाई के आसपास आप उड़द लगाओगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
0: जी, बहुत बढ़िया बात चल रही थी डॉक्टर साहब, जल संरक्षण की। जल संरक्षण जो आपने की कि भाई खेत को पानी, खेत मर खेत को कचरो खेत में,
1: खेत के अंदर।
0: है ना? यदि यह सारा गांव वाला सब खेत वाला तो पानी अपना बच्चों को, और इनके अलावा काय उपाय कर सके जी?
1: अब इसके अलावा तो उपाय बहुत सारे हैं कि आपके तो जैसे मान लो पहले राजस्थान सरकार ने खेत तलाइयां बढ़ाई, तो उस खेत तलाई से भी क्या है कि आप सिंचाई कर सकते हैं।
0: जी,
1: तो उससे क्या है कि अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती है तो उसमें रबी
0: हाँ,
1: की फसल में भी काम में ले सकते हैं और खरीफ की
0: और
1: फसल के अंदर
0: अनुदान
1: भी।
0: भी दे रही सरकार।
1: हाँ, और अनुदान दे रही है तो खेत तलाई बनाकर उसको उपयोग ले सकते हैं
0: जी
1: पानी
0: जी
1: को।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। और
1: हाँ
0: अब तो ये फव्वारा सिंचाई चे, दूसरा ये मल्चिंग,
1: हाँ
0: ये
1: ये
0: कई तरह का
1: खुला
0: भी पानी बचाबा का उपाय।
1: खुला पानी छोड़ने के बजाय अगर हम फव्वारा सिंचाई पद्धति से अगर
0: धान भी
1: पानी
0: कर सके
1: लगाते
0: जी,
1: हैं।
0: सो तो
1: हाँ,
0: लोग कर जाते
1: धान भी हो रहा
0: फव्वारा
1: है
0: सु धान कर
1: फव्वारा
0: जाते।
1: से। और आजकल तो क्या है कि जो मिनी फव्वारा और आ गए,
0: हाँ
1: उसको क्या है कि जैसे एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पे जो अपना जो पारंपरिक फव्वारा था उसको उठाने में दिक्कत आती थी। आजकल तो मिनी फव्वारा आ गए, उसको कहीं रोप दो
0: हाँ
1: और
0: चालू
1: आसानी
0: कर
1: से चालू कर दो आप, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आराम से।
0: जी जी जी
1: तो मिनी फव्वारा पद्धति से आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जाए पारंपरिक जो फव्वारा पद्धति है
0: हाँ
1: उसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से
0: जी
1: सब्जियों के अंदर
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वांछित
0: आजकल तो
1: उत्पन्न
0: मल्चिंग भी आ गई।
1: हाँ मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। कोई
0: हाँ
1: भी है ना, आप चारा बिछाकर पॉलिथीन मल्च भी है
0: हाँ
1: तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या है कि खेत के अंदर नमी बनी रहेगी और आप वांछित उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी, ये जो करसान भाई बहन छे आपकी बातचीत सुन रहे छे, आगे ये जल संरक्षण भी करेगा और कम पानी में फसला को उत्पादन करेगा,
1: जी हाँ,
0: इकल के एक लर्न में संदेश का रूप में काहे के बचाओ।
1: मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि भविष्य की कृषि का आधार जल संरक्षण और जल दक्षता है। यदि हम आज से जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाएं और जल की आवश्यकता के अनुसार फसलों का चयन करें
0: बहुत बढ़िया
1: तो
0: डॉक्टर।
1: हम न केवल कृषि को लाभकारी बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधनों का संरक्षण कर
0: कर
1: सकते
0: सर डॉक्टर रामस्वरूप नरोलिया आचार्य, कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा, आपमा की चौपाल में पधार्या, इकले का आपके ताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। RKVY कृषि विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से जस्ता और लोहा यानी जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ाकर मनुष्यों में पोषण सुनिश्चित करना और इसकी कमी से होने वाले एनीमिया जैसे रोगों की रोकथाम करना। राजस्थान कृषि विकास योजना राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर अनुसंधानों के द्वारा दालों में जिंक और आयरन यानी जस्ता और लोह तत्व के फसल सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण कृषि विकास के लिए ARS कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़िए और देश के विकास में भागीदारी निभाइए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं लोक संगीत का पहला गीत, रागिनी और दीपाली की आवाजों में।

श्रोताओं, आज आपने सुने सीमा मिश्रा, दीपाली रागिनी, सरस्वती देवी, मुकेश बड़ुआ के स्वर, और इसी के साथ लोक संगीत अब संपन्न होता है। लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और अब समय है चित्रपट संगीत का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत का पहला गीत। जिसे हमने लिया है तुमसा नहीं देखा फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नय्यर ने।

लीजिए श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में, सागर फिल्म से। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत बद्ध किया है आर डी बर्मन।

लीजिए श्रोताओं, अगला गीत पेशे खिदमत है कलाकार फिल्म से किशोर कुमार की आवाजों में, इंदीवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है।

श्रोताओं, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं। चित्रपट संगीत में कुछ चुनिंदा गीत हम आपको आज सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म अभिनेत्री।

अभिनेत्री फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अभिमान फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।

अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म से ये गीत। लिखा है इसे मजरू सुल्तानपुरी ने, आरडी बर्मन का संगीत है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुहाग फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत आवाजों में ये गीत, जिसे हमने लिया है बंटवारा फिल्म से। बोल लिखे हैं हसन कमल ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने गीत सुना बटवारा फिल्म से। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत सनम बेवफा फिल्म से। इसे लिखा है सावन कुमार ने और महेश किशोर की संगीत।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म शतरंज से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। रचना है समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। दिल

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। अब समाचार संध्या का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में

0: भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एआई बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का

गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर

0: किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। स्टूडियो की घड़ी में 9 बजे हैं और अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने का।

शून्य। तो आइए अभी तक हमारे पास आपकी जो भी फरमाइशें आई हैं उनके आधार पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम का पहला गीत सुनना चाहते हैं गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। लक्ष्मण लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्नल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और पूरा लोखंडे परिवार, और जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, सना समा, हिना, शकीला जस्मीन, रजिया सुल्तान, अख्तर अंसारी, सूरज मोहम्मद, जावेद अंसारी भी इसी गीत की फरमाइश करते हैं। साथ ही कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हरियाणा से भी रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल भी इसी गीत की फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में ये गीत।

एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुलेश का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपके व्हाट्सएप पर प्राप्त फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और फरमाइश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9530012022।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की ही आवाज में, और इसके लिए हमें फरमाइश मिली है गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वेमी वामिका और वाणी थांदी भी ये गीत सुनना चाहते हैं। और गांव कलाना से तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा ने भी इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत फिल्म अनाड़ी से।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने, और वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश भावसार, राजेश कुमार भावसार ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। साथ ही करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हमें लिखते हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर दपिंदर वरिंदर और कुलदीप सीमू एकम दमन अभिजूत हमें लिखते हैं कि कोई भी गीत में उनका नाम शामिल किया जाए, तो आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। तो ये गीत आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं, फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं। एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम अभी जारी है और अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। इसे सुनने की इच्छा रखते हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक निहारिका और हार्दिक साथी वंश बत्ता भी इसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एसएमएस के बहाने, चंबल चैनल के तराने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर जोड़ा, सिटी दीवाना ने भी इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। मजनू का टीला से भी कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ने भी यही गीत सुनना चाहा है। साथ ही सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, आप सभी ने धनवान फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है। और अभी हमें एक मैसेज एसएमएस और मिला है। राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का, आदर्श नगर मलोट पंजाब से, आप सभी सुनना चाहते हैं धनवान फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण एफएम 102 एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.3 एक मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही प्रोग्राम चल रहा है एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। तो अगर आप भी अपने फरमाइश का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें अभी व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हमारे नंबर हैं 9530001202।

साथियों, अगला एसएमएस हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे, बेबी किट्टू का। पलेश टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा कर्मा ने भी यही गीत सुनना चाहा है। साथ ही हमें एसएमएस मिला है नरवेल महाराष्ट्र से भी, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशेष नहावकर, और मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, नारायण इंगले, आशीष मुहेरकर ने भी यही गीत सुनना चाहा है। साथ ही अभी अभी हमें एक एसएमएस मिला है जो कहते हैं

कि हमारी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दे। आपने SMS भेजा है वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, आप सभी की फरमाइश पर चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस के बहाने चंबल चैनल की तरह ने। अभी हमें आपका एसएमएस मिला अदालत फिल्म के गीत के लिए, आप सभी सुनना चाहते हैं अदालत फिल्म का ये गीत। फरमाइश करता है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गोविंदपुरा सीकर से राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, साथ ही शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से भी मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ये गीत सुनने की फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं अदालत फिल्म का ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। इसकी फरमाइश हमें मिली है ग्राम लसोड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, श्री वैष्णव की, और राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल और रानी, आप सभी ने भी हमें इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है। साथ ही महाराज नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण, देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश करते हैं। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट्स तक

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है, वो कौन थी फिल्म के लिए। फरमाइश करता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां भी इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजते हैं, आज़ाद नगर हरिद्वार से। और गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी हमें यही गीत सुनने के लिए SMS भेज रहे हैं। साथ ही ग्राम आन गांव, जिला जलाना से परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, स्वाति शिंदे, वैष्णवी शिंदे, प्रहलाद शिंदे और सभी शिंदे परिवार भी यही गीत सुनने की फरमाइश हमें करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख भी यही गीत सुनना चाहती हैं। साथ ही जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें फरमाइश मिली है मुकेश कश्यप की, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मीनाक्षी, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, रोहिणी और ऋतिक बलवीर भी हमसे फरमाइश करते हैं यही गीत सुनने की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर। हमें फरमाइश भेजी है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू नागर, मोहित नागर और लकी नागर, तानिया नागर ने। साथ ही धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू ने भी हमें फरमाइश भेजी है। वो कह रहे हैं कि आप कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए तो हम आपको हमारी पसंद का इस बार आखिरी गीत सुनवाएंगे। साथ ही गांव रायखाना जिला बठिंडा पंजाब से परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानो, दीपू, वीरपाल, कुलदीप सिंह भी कोई भी गीत सुनने की फरमाइश करते हैं। साथ ही गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता भी किसी भी गीत को सुनने की फरमाइश करते हैं। और आखिरी

फरमाइश हमें मिली है श्री गंगानगर राजस्थान से, मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु जनागल और डॉक्टर सुनील जनागल की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने समाप्त होता है और आपके रेडियो साथी मुलेश को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार। एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने अभी तक आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मूल भाव न कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

अजीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया के भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला ले कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ा।

दिल का क्या भरोसा तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें, जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.3 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।

बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री